0: 1 second sir. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो.
0: आपने नहीं किया है?
1: नहीं.
0: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
0: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है.
0: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे निकाले.
0: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
0: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
0: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं. मुझे नहीं पता आप
1: ठीक बोल रहे हो ना, वहीं
0: आके आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं. सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
1: क्या
0: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
2: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी. और बैंक हमारा मिर्ची का है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
0: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दी आपने.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट मिर्ची. रोशी रोशी Mirchi Roshi. Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: तो ऑन द वन हैंड आप एक बंदे से बात कर रहे हो और फिर ऑन द अदर हैंड उस बंदे से बात करते करते यू आर वॉकिंग इनटू अ कैफे बिकॉज आपकी एक डेट भी है. एंड व्हाई नॉट, 4-5 ऑप्शंस तो होने चाहिए लाइफ में, है ना?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
4: इफ यू आर अ बिलीवर इन नॉन मोनोगमी जिसे पॉलीगमी कहते हैं और उसके बारे में कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. लेट्स गेट टॉकिंग बेबी. एंड मेरे साथ लाइन पर अभी है एक बहुत ही नॉटी बॉय जो अपने आप को कानून के चंगुल से बचाकर मुझसे फोन पर बात कर रहा है. हेलो नॉटी बॉय कॉलिंग नॉटी बॉय. हेलो नॉटी बॉय. हाय.
5: हेलो. हाय.
4: तो क्या ये सच है कि आपने अपने आप को कानून के चंगुल से छुड़वा कर मुझे फोन कॉल किया है?
5: हाँ जी बिल्कुल सच है.
4: तो आप क्या मुझे इस सच्चाई पर और रोशनी डाल सकते हैं?
5: हाँ जी मैं बताता हूँ. तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम एक कार में थे. हाँ. सुबह हो रही थी और वो रेंटल कार थी तो हाँ. रात की कुछ 4 बज रही थी एंड हमारे वो कार का ड्रॉप ऑफ भी 4:30 अराउंड था.
4: हाँ.
5: तो हम गाड़ी में बैठ के दारू पी रहे थे एंड
4: हाँ.
5: हम दोनों काफी बंद थे.
4: हाँ.
5: तो फिर हम देखते हैं दूर से एक पुलिस की कार आ रही है एंड वो रॉन्ग साइड आ रही है.
4: ओके.
5: तो हमने देखा कि यहाँ से चल लेते हैं क्योंकि अगर पकड़े गए तो हम दोनों की ऐसी की तैसी हो जाएगी.
4: करेक्ट.
5: और मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और पुलिस की गाड़ी मेरे सामने आती है, मेरे को हाथ देती है कि रुक जाओ. और तब मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं.
4: हाँ.
5: मैं नहीं रुकूंगा.
4: हाँ.
5: मेरे अंदर का डॉन जाग गया.
4: हाँ.
5: और मैंने वहां से गाड़ी भगाई और हमने गाड़ी की ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाली. हम जैसे लेफ्ट राइट करते करते गाड़ी की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंचे और तब तक हमने वहां एक उबर बुला ली थी.
4: हाँ.
5: तो हमने जैसे ही गाड़ी ड्रॉप करी हम एक उबर में बैठ के वहां से चले.
4: Dude, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर आप एक भंड अवस्था में हैं, आपका दिमाग इतना चल रहा था कि लेफ्ट राइट ऐसे वैसे एंड लाइक नॉट अ स्क्रैच ऑन द कार या गर्लफ्रेंड पर भी
5: कोई कोई स्क्रैच नहीं. अब सोचो मेरा सोबर में कितना दिमाग चलता होगा.
4: तू बहुत पानी बंदा थे, कुछ रोशिफाई कर दूं?
5: कर दो प्लीज.
4: देयर यू गो,
3: यू've been roshified.
4: अगली बार या तो भंड मत होना और अगर होगे तो ऐसी जगह होना जहाँ कॉप्स तुम्हें चेज ना करें लाइक द डॉन. हर बार मजे नहीं आएंगे, प्रॉमिस कर रही हूँ.
5: हाँ जी, हर बार तो नहीं.
4: हाँ जी, ऑल द बेस्ट टू यू. अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही भंड अवस्था में अजीब व गरीब कारनामे किए हैं तो मेरी जान, हु विल यू कॉल एक्सेप्ट फॉर योर ब्रोशी.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: काम डाउन माय भगजनो, आपने जब अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई की थी तब मुझसे पूछ के नहीं की थी, उसे झूठ बोला था, मुझसे पूछ कर नहीं बोला था, लेकिन अब जब आपके साथ वो कॉन्फ्रंटेशन करने वाली है एंड शी वांट्स यू टू शो अप इन पर्सन, माय ओनली सजेशन टू यू इज ब्लू कलर के कपड़े पहन कर जाना। जब भी किसी झगड़े में सामने वाले इंसान ने नीले रंग के कपड़े पहने होते हैं, दे एक्चुअली टेंड टू काम द एंटायर सीन डाउन। अर्थात जहां आपकी गर्लफ्रेंड 100% लाल पीला हो रही है, प्लीज पार्डन माय कलर पन, वहीं वो आपके ब्लू कपड़ों के आसपास आते ही कम से कम 40 डिग्री ठंडी हो जाएगी एंड शी विल बी लेस मैड एट यू। यू आर ऑलरेडी वेलकम फॉर दिस टिप। अगर आपको ऐसे ही पर्सनलाइज्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाइल यू डू दैट नॉरी बॉय, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर God's sake किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मेरा एक नया नया रिलेशनशिप है, एंड आई थिंक दैट अपने बंदे से ज्यादा आई एम इन टू हिम करंटली, एंड आई नो दैट प्रोबेबली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही विल ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दैट आई डू. और क्योंकि मैं उससे ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आई डोंट वॉन्ट टू ब्लो अप द रिलेशनशिप बिकॉज मैं उससे दो पेसेज आगे हूँ. हाउ डू आई मेक श्योर दैट दिस गाय इज एज इन टू मी एज आई एम इन टू हिम? रोशी
1: रोशी के डीएम से
0: अनु ने मुझे ये मैसेज लिखकर भेजा है. एंड अनु, आई टोटली अंडरस्टैंड इट. यू नो, इट्स काइंड ऑफ easier for women to fall in love before the man does in the same relationship. और ये इसलिए because बंदियाँ थोड़ी सी ज़्यादा intense होती हैं, and research के हिसाब से women are so excited about getting into a milestone कि हमें सच्चा प्यार हो गया और अब हमें like इस relationship को एक committed shape और form दे देनी चाहिए, that women actually end up missing out the fun parts of dating. Whereas बंदे actually, it's not just your guy, but banda actually is someone who likes to take it slow. Most men like to take it slow. Also, अगर आपको लग रहा है कि आप constantly उस बंदे के बारे में obsess कर रहे हो, then that's a sign of unhealthy emotional attachment. Because you should spend a lot of time with this guy, लेकिन also you should be able to have fun only with yourself. क्योंकि कई बार क्या होता है, एक relationship में जब हम एक बंदे को space नहीं देते हैं, they end up feeling claustrophobic, और फिर वो एक step पीछे ले लेते हैं. और जब वो एक step पीछे लेते हैं, आपको लगता है वो आपसे दूर हो रहे हैं, आप एक step और आगे ले लेते हो, and that scares him even more. So you understand what happens here? I guess the only thing is, इस नए relationship में ना, उसे space दो. और दूसरी चीज, क्रिएट इमोशनल सेफ्टी फॉर हिम. मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पर जब वो क्रिप कर रहा है या वो अपने दिन के बारे में ऐसे 100 लोगों को गालियां दे रहा है, इफ दे फील लाइक यू आर नॉट गोना जज देम, और आप उनकी बात सुन के समझ रहे हो, एंड यू आर नॉट गिविंग अ सोल्यूशन, जस्ट लिसनिंग टू देम, दैट मेक्स देम फील सो मच बेटर. ऑल्सो एक बंदे के लिए आई फील, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ यू कीप थिंग्स लाइट एंड प्लेफुल, दे आर गोना लव स्पेंडिंग टाइम विद यू मोर एंड मोर, दे विल बी अट्रैक्टेड टू यू. क्योंकि द मोर पॉजिटिव एंड फन एक्सपीरियंसेस यू शेयर, द मोर दैट पर्सन विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ यार, सबसे ज्यादा मजे तो मैं इस बंदी के साथ करता हूँ. सो इफ यू कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड, आई थिंक यू आर गोना एंड अप हैविंग अ फैंटास्टिक एंड अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप. एंड ऑन दैट नोट, अगर आप इसके बारे में फोन पर बात करना चाहते हो, सेंड मी योर नंबर, आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Excuse me, I'm sorry. आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपना denture क्यों उतार रहे हैं, भाई साहब? That is exactly the thought I had in my mind. Okay, so I went out on this date once. और ये बंदा मुझे एक dating app पे मिला. बहुत सही 10/10 almost sound कर रहा था. And I was like, yeah, we totally have to meet. और ये वो. तो हम बैठे हैं and we're like at this really nice fine dining restaurant. हमारा सूप आया, हमने सूप खाया, सब कुछ सही था, सैलेड आया और सडनली ये बंदा अपने मुंह में अपने हाथ डाल के ना पता नहीं क्या हिला रहा था अपने दांतों में. इट वॉज सच अ क्रीपी एक्सपीरियंस एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक आई एम सॉरी, आप ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड, यार वो मेरे ना इनविजिबल ब्रेसेस लगे हैं तो मैं अपने ब्रेसेस उतार रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा कैसे. एंड आई एम थिंकिंग टू माई सेल्फ, श्योर इट्स ग्रेट, आप किसी भी उम्र में ब्रेसेस लगा सकते हैं, इट्स ऑल राइट दैट यू हैव ब्रेसेस, बट ये बाथरूम में जाके भी उतार सकते हैं, टेबल पे बैठ के फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में? भाई ये बंदा अपने ब्रेसेस उतार रहा था एंड आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू, अगर आपका थिएटर ऑफ द माइंड एक्टिव एंड अलाइव है, यू कैन टोटली इमेजिन ये कितना क्रीपी लग रहा था. ओके, लाइक फुल फ्रेंच बियर्ड वाला बंदा अपने दांतों में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है एंड इट वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द creepiest date for sure that I've ever had in my life. और अगर ऐसे ही आपकी भी जिंदगी में creepy AF dates की कमी ही नहीं है, why don't you hit me up? We will compare notes. मेरे पास अभी बहुत सारी stories हैं आपको सुनाने के लिए. And to do that, you can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया है कि दिल करे हाय हाय कोई तो बताए क्या होगा. अगर आप भी अपने फ्यूचर को लेकर अगर आप बहुत ही एंग्शियस हैं, नॉट दैट आई कैन रीड योर फ्यूचर फॉर यू बट वी कैन टॉक अबाउट इट फॉर श्योर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. आप मुझे इंस्टा या FB पर अपना नंबर भेज दो एंड आई विल बी हैप्पी टू कॉल यू लाइक आई एम अबाउट टू कॉल मिस्टर परफेक्ट किलर _19. हेलो, हाय, इज दिस मिस्टर परफेक्ट किलर _19?
3: कौन?
2: क्या कौन? अपना नंबर भेज दे रहा है, नहीं बताता किसको मैसेज कर रहे हो.
3: अच्छा अच्छा अच्छा हाँ,
2: अच्छा
3: हाँ,
2: अच्छा
3: हाँ,
2: अच्छा
3: हाँ,
2: अच्छा हाँ. अपना नाम तो बता दो.
3: मेरा नाम कुंदन कुमार है.
2: अच्छा ये बताइए, सिंगल है आपकी डबल रोटी है?
3: नहीं अभी तो सिंगल है.
2: आप साउंड तो बहुत सेक्सी करते हो, अगर आपकी आवाज इतनी सेक्सी और इतनी प्यारी बातें करते हो आप तो आप सिंगल क्यों?
3: अभी तक कोई मिली नहीं वैसा कि जिसको हम बोले कि मतलब ऐसा कोई मिली नहीं.
2: तो आप 28 साल से ही सिंगल है या बीच में कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी आपकी जिंदगी में?
3: अब वैसे मतलब आया और चला गया तो उसका कोई मतलब नहीं है ऐसा. हाँ. मतलब है कि कंटिन्यूअसली कोई ऐसा रहे वैसा मिली नहीं मतलब.
2: अच्छा क्यों? आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं? आपकी क्या टॉप 3 चीजें हैं जो आप एक लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये 3 शर्तें हो जाएं एक लड़की में तो फिर हम सोच सकते हैं कि लंबा मामला चल सकता है?
3: मैं चाहता हूँ कि पहले तो वो मतलब मेरे हिसाब का हो, दैट मीन्स की हाइट बॉडी मतलब हर प्रकार से मेरे लाइक है ना, समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर हो है ना, जो मुझे समझ सके. और विशेष कुछ नहीं चाहिए मुझे तो.
2: विशेष कुछ नहीं चाहिए? आप तो मिस इंडिया का पूरा चिट्ठा पकड़ा दिए हमको कि जैसे मिस इंडिया है वैसी चाहिए लड़की, और विशेष कुछ नहीं चाहिए, ना किसी भी कुछ है, बस लड़की का जो हाइट हो बिल्कुल 5'5" हो, 5'6" हो, 36 हो उसका. और आपके मम्मी पापा नहीं ढूंढ रहे?
3: और ढूंढ रहे हैं पर वो मिल नहीं रही ना. और सबसे मेन तो पता है मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ. हाँ. और बिहार में लोगों को अच्छी लड़की कैसे मिलती है जब तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होता?
2: अच्छा मुझे लगा बिहार में लड़की ऐसे मिलती है कि उठा ही लो बस. मैं पंजाब में ढूंढा तो हमारे यहाँ तो ऐसे उठा देते. बट यू नो व्हाट, आई थिंक कि आप जितने सुशील हैं और एक्चुअली काफी सरल भी साउंड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बस रोशिफिकेशन की जरूरत है और चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा.
0: यू've been roshified.
2: अब देखना कुंदन, ये साल खत्म होने से पहले पहले चट मंगनी पट गया. और अगर ये हो गया और बिहार में हमको तुम बुलाए नहीं और लड्डू के यहाँ हमें डब्बा भेजा नहीं तो हम उठवा लेंगे, तुमको पहले बता रहे हैं.
3: एकदम श्योर, एकदम मैं आपको बुलाऊंगा. श्योर. हाँ. एकदम बुलाऊंगा. या मैं भोपाल में शादी करूँ या बिहार.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Dr. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai choti choti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल ए के पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

एक कॉफी मग का आइडिया कितना डम साउंड करता है ना, कि ये लाइक 1980s में लोग देते थे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कॉफी मग दे दिया बंदी का नाम लिखवा के. पर मेरी बेस्टी ने मुझे एक्चुअली मेरे जोडियाक साइन का एक कॉफी मग बनवा कर हैंड पेंटेड मुझे दिया. एंड एट फर्स्ट आई वॉज लाइक यार ये कितना पुराने ज़माने का आइडिया है, बट आई रियलाइज कि मैं रोज़ अपनी कॉफ़ी उसी कप में से पी रही हूँ, बिकॉज इट जस्ट फील्स लाइक सच अ पर्सनल गिफ्ट. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हर पुरानी चीज़ ख़राब नहीं होती है. जैसे मेरी बेस्टी ने मेरे लिए ये कॉफ़ी कप बनवा कर मेरा दिल हमेशा के लिए जीत लिया है, आप भी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ हैंडमेड बना सकते हो. एंड कॉफ़ी कप का आइडिया बुरा नहीं है. नॉर्मल कॉफ़ी कप खरीदो बाजार से, उसके ऊपर कुछ इधर उधर अपने हाथ से पेंट कर दो, एक दो दिल बना दो, उसका नाम लिख लो या अपना नाम लिख लो, एंड वोइला ऐसा मास्टरपीस दुनिया में और दूसरा नहीं होगा. और आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आप पे इतना प्यार आएगा दैट यू एंड अप गेटिंग सो मच एक्शन. और एक बार ऐसा हो जाए मुझे थैंक यू बोलने के लिए, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम का स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची एंड आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर आपको नहीं पता ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, तो आपने जिंदगी में इनफ अपने पार्टनर को किस नहीं किया है विदाउट ट्राइंग टू गेट कॉट, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स वो जगहें होती हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा आपको कैच नहीं करता, या सीढ़ियों में वो जगह जहां बैल्कनी से अगर मम्मी पापा नीचे देखेंगे तो आपको नहीं देख पाएंगे किसिंग योर बॉयफ्रेंड। और मैं ब्लाइंड स्पॉट्स की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आज कैंटीन में हम जब खाना खा रहे थे, ऑल ऑफ अस वर डिस्कसिंग कि जिंदगी में एक बार ऐसा हुआ है हम सबके साथ दैट हमें ऐसे कोने ढूंढने पड़े हैं जहां पर कोई हमें किसी को किस करते हुए नहीं देख पाएगा। और हम सब अपने टाइम में वी हैव ऑल प्लेड दैट लाइक यू नो साइंस और मैथमेटिक्स वाला गीक जिसने हर जगह के ब्लाइंड स्पॉट्स अपनी कॉलोनी में ढूंढ के रखे हैं कि एक मिनट मिलेगा वी विल फाइंड दैट स्पॉट किस आर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एंड देन जस्ट बी लाइक हम कुछ नहीं यार वॉक कर रहे थे। अगर आपने भी जिंदगी में ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स की बहुत रिसर्च करके रखी अपनी कॉलोनी में देन हमें नोट्स कंपेयर कर लेनी चाहिए। यू टेल मी योर ब्लाइंड स्पॉट्स वाली स्टोरी एंड आई टेल यू माइन एंड टू डू दैट यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो नाउ गो अहेड हिट मी अप, लेट्स गेट अ लिटिल नॉटी, बट व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Archie Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मेरा एक नया नया रिलेशनशिप है एंड आई थिंक दैट अपने बंदे से ज्यादा आई एम इन टू हिम करंटली एंड आई नो दैट प्रॉबली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही विल ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दैट आई डू. और क्योंकि मैं उससे ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है आई डोंट वांट टू ब्लो अप द रिलेशनशिप बिकॉज मैं उससे दो पेसेज आगे हूँ. हाउ डू आई मेक श्योर दैट दिस गाय इज एज इन टू मी एज आई एम इन टू हिम? रोशी
0: रोशी के डीएम से.
2: अनु ने मुझे ये मैसेज लिखकर भेजा एंड अनु आई टोटली अंडरस्टैंड इट. यू नो इट्स काइंड ऑफ ईजियर फॉर वेमेन टू फॉल इन लव बिफोर द मैन डज इन द सेम रिलेशनशिप. और ये इसलिए बिकॉज बंदियां थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस होती हैं एंड रिसर्च के हिसाब से वेमेन आर सो एक्साइटेड अबाउट गेटिंग इन टू अ माइल स्टोन कि हमें सच्चा प्यार हो गया और अब हमें लाइक इस रिलेशनशिप को एक कमिटेड शेप और फॉर्म दे देनी चाहिए दैट वेमेन एक्चुअली एंड अप मिसिंग आउट द फन पार्ट्स ऑफ डेटिंग. वेयर एज बंदे एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट योर गाय बट बंदा actually is someone who likes to take it slow. Most men like to take it slow. Also, अगर आपको लग रहा है कि आप constantly उस बंदे के बारे में obsess कर रहे हो, then that's a sign of unhealthy emotional attachment. Because you should spend a lot of time with this guy, लेकिन also you should be able to have fun only with yourself. क्योंकि कई बार क्या होता है, एक relationship में जब हम एक बंदे को space नहीं देते हैं, they end up feeling claustrophobic, और फिर वो एक step पीछे ले लेते हैं. और जब वो एक step पीछे लेते हैं, आपको लगता है वो आपसे दूर हो रहे हैं, आप एक step और आगे ले लेते हो, and that scares him even more. So you understand what happens here? I guess the only thing is, इस नए relationship में ना, उसे space दो. और दूसरी चीज, क्रिएट इमोशनल सेफ्टी फॉर हिम. मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पर जब वो क्रिप कर रहा है या वो अपने दिन के बारे में ऐसे 100 लोगों को गालियां दे रहा है, इफ दे फील लाइक यू आर नॉट गोना जज देम और आप उनकी बात सुन के समझ रहे हो एंड यू आर नॉट गिविंग अ सोल्यूशन जस्ट लिसनिंग टू देम, दैट मेक्स देम फील सो मच बेटर. ऑल्सो एक बंदे के लिए आई फील, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ यू कीप थिंग्स लाइट एंड प्लेफुल, दे आर गोना लव स्पेंडिंग टाइम विद यू मोर एंड मोर, दे विल बी अट्रैक्टेड टू यू. क्योंकि द मोर पॉजिटिव एंड फन एक्सपीरियंसेस यू शेयर, द मोर दैट पर्सन विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ यार सबसे ज्यादा मजे तो मैं इस बंदी के साथ करता हूँ. सो इफ यू कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड, आई थिंक यू गोना एंड अप हैविंग अ फैंटास्टिक एंड अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप. एंड ऑन दैट नोट, अगर आप इसके बारे में फोन पर बात करना चाहते हो, सेंड मी योर नंबर, आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आपको मेरी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो यू विल नो कि रिसेंटली मैं एक डेट पर गई थी जहां पर आई एक्चुअली लाइक दिस गाय और अभी भी मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ वेयर आई स्टैंड विद हिम और मुझे उससे क्या चाहिए. मे बी आई एम काइंड ऑफ कमिटमेंट फोबिक राइट नाउ और मैं एक प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ बट मुझे उसकी अटेंशन अच्छी लगती है. अब मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि वो कितना इन्वेस्टेड है इन स्पेंडिंग टाइम विद मी और इसका एक तरीका ये होता है जब सामने वाला इंसान आपके साथ कोई हैंग आउट करने का प्लान बनाए. अभी तक हम दोनों ने दो बार हैंग आउट किया है, दोनों बार प्लान मेरा था बट हमने ना एक 6-7 घंटे इकट्ठे आसानी से स्पेंड करे हैं. बट यू नो व्हाट आई एम गोना डू नाउ, एज मच एज मैं मरे जा रही हूँ प्लान बनाने के लिए, मैं प्लान नहीं बनाऊंगी. डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड व्हेन ही मेक्स अ प्लान मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं. एंड एज मच एज मुझे ये मार्कर बहुत इंटेग्रल लगता है टू फिगर आउट कि आपको सामने वाले बंदे पर टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आप भी मुझसे ये टिप ले लो. अगर सामने वाला इंसान आपके साथ प्लान्स बना रहा है एक्टिवली देन दे आर इंटरेस्टेड, नहीं बना रहा है यू आर दी ओनली वन चेजिंग आफ्टर देम. किसी के पीछे भागने की क्या जरूरत है जब हम खुद में ही इतने कम्प्लीट है ना. सोचो इसके बारे में एंड यू फाइंड आउट दैट इट्स एक्चुअली ट्रू. एंड ऑनेस्टली पता है मुझे क्या लगता है कि जिसके पास लव है ना उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोथ.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: The show starts.

0: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। हेलो, आई एम सुरेन सुंदरम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, जहां हर हफ्ते सिर्फ गानों की रैंकिंग नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन भी सुनाई देती है। शुरुआत कर रहा हूँ विद गाना नंबर 20, व्हिच इज फ्रॉम धुरंधर एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट।
1: नंबर 20।

लेकिन इसके बाद एक बिल्कुल नई एंट्री, टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: Slipping down by one position, Arijit Singh ka gaya Tujhko from Cocktail 2. Lekin apni memories ki hard drive se ek aisa chapter dhoond ke nikal raha hoon that is gonna take you back to your friends and time. इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा खोआ जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई, फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंडट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में, माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रिवाइंड।

ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Only on Mirchi. It's hot. Number 11.

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका तर्ज, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
1: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी एक ऐसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि एक धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते, मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता है वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते। वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
0: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक। स्पेशल।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है. एंड देन एक मोहित सूरी होता है जिसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है. इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते. नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है. और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंड ट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है. तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया.
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बजेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं. जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है. तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ही गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है. मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे, मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूं. तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं.
0: यार बस यही फर्क है, और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं. क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया. फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है. तो दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के. इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन.
2: नंबर 4.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3।

0: Oh my God, Chinnari Chinnari after so many weeks has finally climbed to number 2, even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BB number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen. Uske bawajood gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था.
1: कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे।

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था, वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है, तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

और इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर, बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड।

0: Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी होता होगा कि तुमने कोई चीज बहुत मन से, बहुत शिद्दत से बनाई हो, एंड यू वांटेड एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों को ना तारीफ करने का मन ही नहीं किया. तो डिसअपॉइंटिंग तो लगता ही है. पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और आते ही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगा था देवानंद और विजय आनंद साहब को, दोनों ब्रदर्स को, जब उन्होंने बनाई थी फिल्म गाइड. तो जब गाइड का प्रीमियर हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री वाज इनवाइटेड, एंड विजय आनंद को लगा था कि थोड़ी ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी उनकी जितनी भी कमर्शियली सक्सेसफुल, यू नो, चटपटी मसालेदार बॉलीवुड फिल्म है, उनसे अलग है, तो लोग आकर के ना उनको अप्रिशिएट करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे कि कितना अलग कुछ बना दिया है. लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं. Nobody walked up to him and congratulated him, and this left him shattered कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों. लोगों को एक्चुअली गाइड का क्लाइमैक्स और इतनी अलग फिल्म ना पसंद ही नहीं आई, स्पेशली जो लोग प्रीमियर देखने आए थे, यानी भाई इंडस्ट्री के लोग. फिर क्या हुआ, गाइड यू नो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब बताऊंगी. अभी अभी तो आई हूं, थोड़ा सा इंतजार करो. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी बॉक्स ऑफिस पे खुली तो एकदम फुल हाउस थी, लेकिन उसके बाद सब डिप करने लगा। लोग आ नहीं रहे थे देखने, टिकट्स बिक नहीं रहे थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म गाइड, जिसमें थे देव साहब, उनके भाई विजय आनंद ने फिल्म बनाई थी ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर बुक द गाइड विच वॉज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि भाई देव साहब की फिल्म है तो लोग डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे इसको देखने गए, लेकिन लोगों को इतनी अनकन्वेंशनल ऑफ बीट फिल्म और स्पेशली क्लाइमैक्स ना समझ में आने के चक्कर में ना कुछ ही दिनों में इसका कलेक्शन डिप करने लगा। बट कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और लोगों को जब इसका क्लाइमैक्स कुछ समझ में आया तो लोग वापस इस फिल्म को देखने लगे। आई मीन दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसको लोगों ने दो दो तीन तीन बार जा करके देखा एंड इसीलिए बाद में इसका कलेक्शन ओ हो आसमान छूने लगा। दैट इज वाई 7 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे इस फिल्म ने उस साल। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उन्होंने तो इसको द मिसगाइडेड काइट बोल दिया था। पुरानी जींस में आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म जिसमें थी वहीदा रहमान, जिसमें थे देव आनंद साहब, विजय आनंद ने बनाई थी। मूवी का नाम द गाइड। ये फिल्म जो थी ये अडेप्टेशन थी आर के नारायण की वेरी पॉपुलर फिल्म द गाइड की। तो भाई उनसे यू नो सारी परमिशंस ली गई थी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बॉलीवुड का तड़का तो डालना ही था ना, इसीलिए थोड़ा रोमांस एंगल भी दिखाया गया। बट ये बात आर के नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आफ्टर ही सॉ द फिल्म ही गेव एन इंटरव्यू टू अ मैगजीन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये द मिसगाइडेड गाइड है। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने विद मी श्रेया। तो बस यहीं पे रहना पड़ेगा।

0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल्स।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं आपको बता रही थी कि देव आनंद और विजय आनंद ने भाई जब अपने म्यूजिशियंस फॉर द फिल्म चूज किए, उनको हायर किया, तो उसमें थे हसरत जयपुरी साहब एज लिरिसिस्ट। लेकिन कुछ टाइम देने के बाद ना दोनों भाइयों को हसरत जयपुरी साहब के गाने कुछ समझ नहीं आए, तो उन्होंने शैलेंद्र जी को हायर किया। शैलेंद्र जी ने इस फिल्म के गाने बनाने शुरू किए। लेकिन जब हसरत जयपुरी साहब जा रहे थे और शैलेंद्र जी आ रहे थे, तो हसरत साहब ने ना एक गाना जो आधा अधूरा था वो सुनाया था शैलेंद्र जी को, और उस गाने की जो पहली लाइन थी ना वो शैलेंद्र जी ने रखी। वो गाना ये था, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये लाइन दी थी हसरत साहब ने, आगे इसको कंटिन्यू किया शैलेंद्र जी ने।

0: याद
1: सो दिस लाइन दिन ढल जाए हाय रात ना जाए तू तो ना आए तेरी याद सताए, ये वाली जो लाइन है ये हसरत साहब की थी, लेकिन अगर आप क्रेडिट देखोगे तो ये शैलेंद्र जी का है, बिकॉज आफ्टर दैट द एंटायर सॉन्ग वाज रिटन बाय हिम। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जींस।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

विजय आनंद ने दादा को बोला था कि इस पूरे गाने को ऐसे कंपोज करो जैसे हर स्टैंजा ना अलग गाना है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड, इस फिल्म की बातें और इस फिल्म के गाने। अच्छा, ये एक गाना जो गाइड का था ना, दिस वॉज अ वेरी टफ सॉन्ग टू कंपोज। एक तो ये लंबा भी था, इसमें हरकतें भी बहुत सारी थी और दादा को ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो विजय आनंद हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म, उन्होंने पता है उनसे क्या कहा कि हर स्टैंजा को ऐसे कंपोज करो जैसे कि ये अलग गाना हो। एंड विजय आनंद ऑल्सो थॉट कि गाइड में ना वो हर स्टैंजा को अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे, ऐसे ही पिक्चराइज करेंगे, जबकि वो हुआ नहीं बिकॉज वहीदा रहमान का खूबसूरत डांस इस गाने में था। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दादा ने अपना पूरा बटुआ खाली कर दिया था मेलोडी से भरा हुआ फॉर दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड 1970s में फिल्म आई थी गाइड, जिसकी आज बात हो रही है। सो नवकेतन फिल्म्स यानी देव साहब का बैनर और उनके भाई विजय आनंद का बैनर, वो हमेशा जब भी फिल्म बनाते थे तो SD बर्मन साहब को हायर करते थे। इस बार क्या हो रहा था कि दादा उस टाइम पे आ चुके थे जब उनकी जगह नए म्यूजिशियंस को हायर किया जा रहा था, फिर चाहे वो उनके बेटे RD बर्मन साहब ही क्यों ना हो। सो SD बर्मन साहब को ना एक मौका, वो एक फिल्म चाहिए थी जिसमें वो अपना मिरेकल एक बार फिर से दिखा पाए, एंड गाइड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। मेलिफ्लुस ट्यून्स लाइक आओ, गाता रहे मेरा दिल ले लो, तेरे मेरे सपने ले लो, यू नो इतने सारे गाने, कांटों से खींच के आंचल ले लो, पिया तो से ले लो। तो इसी बात पे आज फिर जीने की तमन्ना है। कमिंग ऑल राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया। SD बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लता जी की आवाज है और वहीदा रहमान का डांस था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स। अप नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

देव आनंद को लगा कि उनका कोई सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं इस फिल्म में, और फिल्म काफी टाइट चल रही, काफी स्ट्रेस में चल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड टुडे। सो देव साहब ने जब ये पूरी पिक्चर बन गई और देखी अपने भाई विजय आनंद हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, उनके साथ बैठ करके ना, तो देव साहब को लगा कि भाई इसमें मेरा कोई सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली एक आध गाना ऐसा सुपर डुपर हिट देते थे अपनी फिल्म का जिसमें बस वो गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जैसे कि हम दोनों में है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता, राइट। तो क्या हुआ, जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई फिर इस पे म्यूजिशियंस को वापस बैठाया गया। एसडी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी ने गाना लिखा एंड ऑफ कोर्स देव साहब इसमें एकदम अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं और गा रहे हैं मेरा दिल। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया अनपुरानी।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

जब पहला सीन लिया गया तो डायरेक्टर विजय आनंद को लगा कि देव साहब के आगे वैजंती माला तो थोड़ी चबी चबी लग रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। सो वैजंती माला को इस फिल्म के लिए चूज किया गया था और डायरेक्टर विजय आनंद ने ना ऐसे ही जब फर्स्ट टेक लिया तो दे थॉट कि वैजंती माला देव साहब के आगे थोड़ी प्लम्प लग रही है। अब भाई विचार विमर्श हुआ देव साहब से भी, फिर क्या हुआ, इन केम वहीदा रहमान। और जब वहीदा रहमान आती थी तो एक्टिंग के साथ अपने डांसिंग स्किल्स भी लेकर के आती थी। ये आपको देखने को मिलेगा गाइड में जब उन्होंने वो गाना किया है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, ओ हो हो। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है ना तो बस इस आवाज के पीछे आपको मिल जाऊंगी फेसबुक और इंस्टा पे। हैंडल है मेरा RJ Shreya with Love, that's RJ SHREYA with Love।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इनको फॉरेन भेजा गया था कलर की टेक्निक को बारीकी से समझने के लिए। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। ये नव केतन प्रोडक्शंस की यानी देव साहब की उनके भाई विजय आनंद की पहली कलर फिल्म थी। अब हुआ ये कि विजय आनंद ने पहली बार एज एडिटर कमान पकड़ी थी अलोंग विद बाबू शेख एंड गाइड वॉज द फर्स्ट कलर फिल्म। सो विजय आनंद चाहते थे कि हर चीज ना एकदम कमाल हो, पहली कलर फिल्म है उनकी खुद की तो इट हैज टू बी परफेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने सिनेमेटोग्राफर फेली मिस्त्री जी को ना अब्रॉड भेजा था, हॉलीवुड भेजा था टू नो द टेक्निक टू शूट द फिल्म इन कलर एंड इट केम आउट सो ब्यूटिफुल। अगर आप रेट्रो फैन हैं और आपने गाइड नहीं देखी तो क्या आप रेट्रो फैन हैं? और पता है आपको ये किसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज माई मॉम हू सेड कि बाकी रेट्रो फिल्म के बारे में तुम बहुत बात करती हो, गाइड इज अ मास्टर पीस एंड इट इज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। गाने सुन करके वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है इसी फिल्म की।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब को ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया था। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, विजय यानी उनके भाई विजय आनंद, हु वाज एडिटिंग द फिल्म, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, चलो एक काम करते हैं, गाना बना लो, बाद में देखेंगे रिटेन करना है कि नहीं करना है। बट बाय द टाइम इस गाने की शूट एंड हुई, ही लव्ड द सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ गाइड फिल्म की बात हो रही है, देव साहब की फिल्म थी ये, एंड इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले एस टी बर्मन साहब, गाने लिखने वाले शैलेंद्र जी, और उन्होंने एक गाना लिखा जिसपे वहीदा रहमान ने क्या परफॉर्मेंस दी। द सॉन्ग वॉज, अब ये गाना जब बनने लगा ना तो देव साहब को बिल्कुल नहीं पसंद आया, उनको लगा कि क्यों ही रख रहे हैं हम ये गाना। लेकिन बाय द टाइम ये गाना शूट होकर के एकदम कंक्लूड हो रहा था, ही लव्ड द सॉन्ग, एंड फिर इस गाने को रिटेन किया गया, एंड व्हाट अ प्रिटी प्रिटी सॉन्ग। ये गाना मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ तो फिर से नहीं सुनाऊंगी। लता जी का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

ये मूवी दो वर्जन्स में शूट हुई थी, एक इंग्लिश वर्जन में इन कोलैबोरेशन विद पर्ल एस बक, डायरेक्टेड बाय टेड डैनियल ल्यूस्की, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस देव आनंद साहब टू वेस्टर्न ऑडियंस। और हिंदी वर्जन उसके बाद में आया जब देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। पहले ये था कि भाई एक ही वर्जन को वापस शायद डब कर लेंगे, लेकिन नहीं, देव साहब को लगा कि भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी हिंदी ऑडियंस के साथ। और फिर हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैशेस भी हुए थे जिसकी वजह से देव साहब ने इसकी बागडोर संभाली, अपने भाई को भी संभलवाई और नवकेतन प्रोडक्शंस के अंडर में ये फिल्म को बनाया गया। टॉकिंग अबाउट द फिल्म ऑफ कोर्स गाइड फिरानी जीन्स पे, मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो हाईवे पे भी जाना है।

0: Star Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, Kaden, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
4: अब मिर्ची का
6: रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
7: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची पर साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
3: ओके देन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है, एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो, इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू, क्योंकि फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
3: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू, I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, AKA Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो, एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ, स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज, विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मेरे, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर प्रिया जी ने एक सवाल भेजा है कि अगर सच्चा प्रेम समाज, परिवार या धार्मिक मान्यताओं की वजह से अधूरा रह जाए और बिना किसी गलती के दो लोगों को अलग कर दिया जाए, तो उस अधूरे रिश्ते के दर्द से कैसे बाहर निकलें? जब हर पल उसी इंसान की याद आए तो मन को शांति कैसे मिले?
3: से जो प्यार होता है वो हो सकता है आप इकट्ठे नहीं है, लेकिन प्यार एक एनर्जी है।
2: बिल्कुल।
3: अगर किसी भी कारण से आप, चाहे वो कम्युनिटी थी, रिलीजन थी, जो भी था, या तो आप उसको उस समय पर फेस कर लेते।
2: जी।
3: अगर आपने आज, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आप किसी और के साथ हैं और आप जिनके साथ होना चाहते थे उनके साथ नहीं है, लेकिन वो रिश्ता जो है वो मन में बनता है, और मन में आज भी अगर किसी के लिए हम अच्छा सोचते हैं, उनके लिए शुभ भावना रखते हैं, सोचते हैं वो जहाँ पर भी हों खुश हों, जहाँ भी अपने जीवन में हों आगे बढ़ें, जहाँ भी जाएं सफल हो, इससे ज्यादा श्रेष्ठ पवित्र प्रेम कुछ हो नहीं सकता।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
3: तो दर्द को कैरी नहीं करें, कुछ ना कुछ हमारा भी कार्मिक अकाउंट होता है। अगर हम किसी कारण से किसी के साथ नहीं है तो उस चीज को गिल्ट में जाकर के रिग्रेट करे न करके अपने मन में उस आत्मा के प्रति हमेशा प्यार रखें, शुभावना रखें।
2: और वैसे भी साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं इस पर कि वो अफसाना जिसे एक अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए।
3: छोड़ देने का मतलब ये होता है कि आप भूल तो नहीं पाते। कई बार लगता है कि छोड़ दे, मतलब भूल जाए, मैं तो उसको कभी भूल ही नहीं सकता। मत भूले, जब जब उनकी याद आए एक अच्छा सा थॉट क्रिएट कर ले।
2: बहुत बढ़िया।
3: उनको आप भूल नहीं सकते, तो जब
2: अच्छी पॉजिटिव एनर्जी,
3: आप दर्द नहीं क्रिएट करें, वो मेरा नहीं हो सका, मैं उनके साथ नहीं रह सका। अब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो जहाँ भी हो ठीक हो, खुश हो, आगे बढ़े, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें, उसमें पेन ना क्रिएट करके उनके लिए कुछ अच्छा सोच करके वो गुड विशेस उनको भेजें। एक्चुअली तो अनकंडीशनल लव वही है।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: लता जी ने एक सवाल भेजा है कि मैं अपने बच्चों की तुलना हमेशा दूसरों के बच्चों से करती रहती हूँ। इस आदत की वजह से मैं खुद भी परेशान रहती हूँ और बच्चे भी, उन पर भी असर पड़ता है। इस सोच को मैं कैसे बदलूं?
3: ये बहुत अच्छी बात है कि वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये गलत है।
2: हाँ,
3: बहुत लोग बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं लेकिन वो रियलाइज नहीं करते कि उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है।
2: सही।
3: उनको लगता है ये जरूरी है, वो उनको इंस्पायर करता है। तो पहली चीज, तुलना राइट नहीं है।
2: वो स्टेप उन्होंने ले लिया। हाँ,
3: अगर आप किसी को कंपेयर करते हैं तो वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कम करता है। तो उसके लिए अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो आप अपना फोकस सिर्फ अपने बच्चे पर लेकर आए। अपने बच्चे की विशेषताओं को देखने की कोशिश करें। उस विशेषताओं के बारे में उसको भी अवगत कराएं, उसको भी रियलाइज कराएं कि उसका स्वमान बढ़े। और फिर जो चीजें हैं जिसके अंदर आपको कमी दिखाई देती है वो भी उसके ध्यान पर लेकर के आए। लेकिन फोकस सारा सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर रखें। एज अ पेरेंट आपका काम है उसकी जो क्वालिटीज हैं वो उसको पता हो कि वो उसको यूज कर सके,
2: और कमी भी पता हो ताकि उसको बेटर कर सके,
3: वो उसको चेंज कर सके। सो द फोकस हैज टू कम ऑन योर चाइल्ड।
2: यू नो, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ जी ने एक बार कहा था कि यू डोंट प्ले अगेंस्ट योर ओपोनेंट्स, यू प्ले अगेंस्ट योर सेल्फ।
3: द रेस इज ऑलवेज अगेंस्ट आवर सेल्फ।
2: कंपैरिजन अगर खुद से हो तो दूसरों से होगा ही नहीं कभी।
3: ये यात्रा ही आपकी है। ये हमने एक्चुअली देखो, लाइफ रेस है ही नहीं किसी के साथ। हमने कहीं ना कहीं ये थॉट क्रिएट किया और रेस के अंदर चले गए। एक्चुअली हर एक अपनी यात्रा पर है और जरूरी है कि अपनी यात्रा में हम अपना बेटर वर्जन बने। पर ये जरूरी है कि किसी किसी से देख करके हम इंस्पायर होते हैं।
2: सही बात है, कंपेयर ना करें।
3: कंपैरिजन और इंस्पिरेशन में बहुत फर्क है।
2: सही बात।
3: आप कंपेयर करते हैं, आप व्यक्ति को देखते हैं, आप जेलसी को एक्सपीरियंस करते हैं। इंस्पिरेशन में आप मोटिवेट होते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये इतना डिसिप्लिन्ड है तो मैं भी हो सकता हूँ, ये कंसिस्टेंट है तो मैं भी हो सकता हूँ। आप क्वालिटी को पकड़ते हैं और आप कहीं से भी सीखते चले जाते हैं। तो इंस्पायर होना जरूरी है, पर किसी से तुलना करना वो जेलसी क्रिएट करता है और वो सोल पावर को डिप्लीट करता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: अजिंक्य, आई एम होपिंग रहने नहीं है ये, उन्होंने लिखा है कि किसी अपने को विश्वास कैसे दिलाएं।
3: एक्चुअली देखो क्या होता है, हम अपना कर्म बहुत ही सही तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर कोई विश्वास नहीं करता है ना, तो वो उसकी पर्सनालिटी होती है। हम अपने कर्म से ही कर सकते हैं। हमें ऐसा कई बार बहुत लगता है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि उनकी नेचर चेंज हो जाए। इट इज माय एक्सपीरियंस कि जब तक वो नहीं चाहते, तब तक वो क्वालिटी उनके अंदर आती नहीं है।
2: वॉरेन बफे ने इसके बारे में एक बार कहा था कि ट्रस्ट इज लाइक द एयर वी ब्रीद, व्हेन इट्स प्रेजेंट नोबडी नोटिसेस इट, बट व्हेन इट्स एब्सेंट एवरीबडी नोटिसेस इट। तो शायद हम पे भी है कि हम कितने ट्रस्ट वर्दी हैं। ये शायद सिर्फ औरों के लिए नहीं है कि वो मुझे ट्रस्ट नहीं करता तो मैं उनको अपने आप पे कैसे विश्वास दिलाऊं। शायद हमने भी ऐसा कोई काम किया होगा कि हमारी रेपुटेशन बन गई कि हम ट्रस्ट वर्दी नहीं रहे।
3: वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? आप अपना एक्शन ही तो ठीक कर सकते हैं ना।
2: सही बात।
3: ट्रस्ट वर्दी अगर किसी का ट्रस्ट आप पर नहीं है तो किसी कर्म के कारण होगा।
2: सही बात।
3: कोई तो पास्ट का एक्शन ऐसा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्शन को चेंज कर सकते हैं।
2: सही बात। हाँ।
3: लेकिन उसके बाद भी जरूरी नहीं है
2: कि वो अपना
3: वो आपको ट्रस्ट
2: चेंज करे।
3: मतलब ये हमेशा हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हम अपना ही रोल बेस्ट प्ले कर सकते हैं।
2: तो अपना रोल बेस्ट प्ले करिए, जितनी मेहनत करनी करिए, लेकिन सामने वाले को आप चेंज नहीं कर सकते।
3: चेंज नहीं कर सकते। वो जरूरी नहीं है कि आपने, कई बार होता ना, अब मैंने सब कुछ तो कर लिया,
2: अब मैं और क्या करूं,
3: फिर भी वो मुझे ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है।
2: सही बात।
3: आप बेस्ट वर्जन ऑफ ब्लू भी हो, लेकिन उनको पसंद ग्रीन है।
2: सही बात।
3: तो आप क्या कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग नहीं ट्रस्ट करना चाहते, उनको कंफर्टेबल नहीं होता, उनके लिए आता नहीं है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। जबकि ट्रस्ट इज द मोस्ट कंफर्टेबल फीलिंग। आप अगर वो उस चीज में मदद चाहते हैं तो आप मदद दे सकते हैं, पर उनको कई बार जरूरत ही नहीं लगती है। दे थिंक दे आर राइट द वे दे आर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम अपना बेस्ट करें, अपना रोल सही तरीके से प्ले करें। अब सामने वाला ट्रस्ट करता है कि नहीं करता, आप उसको छोड़ दें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गगन खिरे बदरा सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन छाया है अंधियारा।

धड़कन आई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करना क्यों जरूरी है, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक लाइन है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, तो मैं ट्रस्ट जरूर करता हूँ लेकिन मैं वेरीफाई हर चीज करूंगा, तो एक तरह से मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ।
4: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रस्ट करके वेरीफाई करने में कोई बुराई नहीं है। ट्रस्ट और डाउट जो है ना, वो भी एक इमोशनल स्टेट है। तो ट्रस्ट क्या होता है कि आप मन में कहते हैं कि नहीं ये अच्छा है, सही करेगा। फॉर एग्जांपल, छोटा सा आपने घर में कोई मेडी रखी है, आप उसको ट्रस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप केयरफुल तो रहते हैं ना।
3: हाँ, ऐसे ज्वेलरी सब जगह
4: थोड़ी ना रखेंगे। हाँ। फिर भी अगर आप अपनी कबर्ड लॉक करके जाते हैं या आप अपना सब सामान ठीक से रखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप डाउट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप केयरफुल हैं। और अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हैं, तो समझो आपने कोई चीज रखी भी, आप ये देखना ही चाह रहे थे कि वो उठाते हैं नहीं उठाते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। सो बीइंग केयरफुल एंड वेरीफाइंग इट इज ओके, क्योंकि समाज ऐसा है ना कि उसके अंदर आप ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। उसमें कई लोग हैं कि आप उनको ट्रस्ट भी करेंगे तो भी वो आपका नुकसान करके चले जाते हैं। इसलिए केयरफुल होना बहुत जरूरी है। लेकिन डाउट की एनर्जी क्या होती है, हर व्यक्ति के प्रति ये सोचना ये कहीं चोरी ना कर ले, ये कोई चीज उठा करके ना ले जाए। आजकल तो सब ऐसे ही होते हैं, सारे ऑटो वाले ऐसे हैं, तो आप पहले से ही उनके प्रति एक इमेज बना रहे हैं,
3: वो नहीं करना,
4: उस इमेज से अटैच हो रहे हैं, फियर क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी वो एनर्जी भेज रहे हैं, वो नहीं करना है। ट्रस्ट के साथ केयरफुल होना और वेरीफाई करना, इसमें कुछ गलत नहीं है।
3: और ऐसे केस में बावर्ची फिल्म जरूर देखिए, बहुत खूबसूरत फिल्म है, जिसमें ट्रस्ट, वेरिफिकेशन, ह्यूमिलिटी, फ्रेंडशिप सब कुछ दिखाया गया है।
4: ये सब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं वो सत्ययुग नहीं है, वो कलयुग है। माना हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां हैं, और भले हम उनको चेंज नहीं कर सकते पर अपने को तो उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना।
3: सही बात।
4: हम केयरफुल भी ना हो और फिर उनको ब्लेम करें, तो इस समय पर जरूरी है कि हम जितना हो सके ध्यान दें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर रीना जी ने एक सवाल भेजा है कि जब जिंदगी में हर तरफ परेशानियां हों और किसी अपने से धोखा मिले तो क्या बिना लड़ाई या शिकायत किए उस रिश्ते को सुधारा जा सकता है? ऐसे समय में खुद को कैसे संभालें?
3: देखो, जब कोई हमें चीट करता है, धोखा देता है, तो उनका बिहेवियर गलत है।
2: सही बात।
3: आप कभी भी धोखा या चीट को राइट तो नहीं कह सकते, लेकिन अब किसी ने हमारे साथ व्यवहार किया, अब पहले हमें अपना ध्यान रखना है।
2: सही बात है।
3: हम हर्ट भी हो सकते हैं, हम हर्ट होकर के उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैंने उनको ट्रस्ट किया था, वो मुझे कैसे चीट कर सकते हैं, फिर बिटर भी हो सकते हैं और यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं जो कई लोग कहते हैं कि अब मैं दोबारा कभी किसी को ट्रस्ट ही नहीं करूंगा। और दूसरा है कि आप अपने को कहते हैं आई चोज टू ट्रस्ट दैट पर्सन, ये मेरी चॉइस थी, उन्होंने जो किया वो उनका बिहेवियर था, उनका कर्म था, एक्सक्यूजेबल नहीं है।
2: सही बात।
3: बट आई चूज टू प्रोटेक्ट माई पीस। हो गया, अभी मैं बिटर नहीं होंगी, मैं उसके बारे में सोच करके हर्ट नहीं होंगी। तो आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है। अब अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, देखो पहला रिश्ता हमेशा खुद के साथ होता है।
2: सही बात।
3: फिर ही आप बाहर रिश्ता बना सकते हैं। हम बाहर रिश्ता बनाना चाहते हैं तो सोचते हैं अंदर पीस रहेगी, ऐसा नहीं होता। आपका अपने साथ रिश्ता ठीक होगा, आप अपने को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी वर्थ को बचा करके रखेंगे। नाउ सेकंड स्टेप, बाहर आपको चूज करना है, आपको उनको एक और चांस देना है, आप दे सकते हैं। एक और चांस तब देना चाहिए जब सामने वाला रियलाइज करता है कि उसने गलती की है और वो चेंज होना चाहता है। दैट कुड बी वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो रियलाइज ही नहीं करता, तो आप बाउंड्री बनाना चाहते हैं और उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, वो भी ठीक है। तो वो सेकंड स्टेप है, आपको क्या करना है, रिश्ता बनाना है या किनारा करना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि यू चोज टू ट्रस्ट दैट पर्सन, इसलिए हर्ट ना होकर के अपने को प्रोटेक्ट करें और फिर आप जो भी कदम उठाना है वो उठाएं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आज के टाइम में सीधा रहना ठीक है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसान होते हैं ना जो बहुत सिंपल होते हैं और उनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। और मैं अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक एस्पेक्ट है कि वो बहुत सिंपल हैं और उनको बहुत लोगों ने बहुत सालों से बेवकूफ़ बनाया है। और जब मैं उनसे बात करता हूँ कि यार इतनी बार अगर धोखा आपको मिला है, इतनी बार आपको लोगों ने अगर बेवकूफ़ बनाया, तो कहीं ना कहीं आपको भी देखना पड़ेगा। तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो कहते हैं कि देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर लोग मुझ में कमियां निकाल के मुझे बेवकूफ़ बनाकर अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो उनका कर्म है। बट एट द सेम टाइम जब मैं उनकी वाइफ से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि मैं इनको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि यू नो, इफ़ पीपल आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू रेगुलरली तो आपको सावधान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भैया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लोग अगर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। ऐसे केस में उनको क्या सलाह दें?
4: देखो, ये अलग अलग सर्कमस्टेंस होते हैं। सिंपल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको ग्रांटेड ले ले। सिंपल आप हैं। अब ये दो बातें, एक है कि किसी ने आपका एडवांटेज उठाया तो आपको सीखना चाहिए कि वो चीज दोबारा ना हो। आपको केयरफुल होना चाहिए, आपको बाउंड्रीज सेट करने चाहिए। पर कई बार उसमें ये भी होता है, फॉर एग्जांपल आपकी नेचर है मदद करने की, आपने मदद किया पर आपको ऐसा लगता है कि मैं मदद करता हूँ, दूसरा तो कभी मुझे मदद नहीं करता, तो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं वो आपका फायदा उठा करके चले जाते हैं। पर उसमें अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उस संस्कार को या तो छोड़ दें मदद करने को, या आप कहते हैं कि भाई ये तो मेरी नेचर है, मुझे मदद करना अच्छा लगता है, कोई करे या ना करे। लोगों को इसमें भी लगता है कि वो आपका फूल बना करके चला गया। वो आपका फूल बनाकर नहीं गया, वो कर रहा है जो उसको ठीक लगता है, आप वो कर रहे हैं जो आपको ठीक लगता है।
3: इस केस में वो बहुत इजीली ट्रस्ट करते हैं इंसानों पे, तो क्योंकि वो बहुत इजीली ट्रस्ट करते हैं, बहुत बार कुछ लोग गलत भी निकल आते हैं तो वो उनका एडवांटेज लेके अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ, वो कहती हैं कि आपको कितनी बार बोला, इजीली ट्रस्ट मत किया करो। और वो कहते हैं कि भैया मैं जो हूँ मैं ऐसा ही हूँ, अब अगर लोग बुरे हैं तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है।
4: ट्रस्ट करना चाहिए लेकिन केयरफुल तो होना चाहिए ना। सी, अगर लोग बुरे हैं तो आप मना, हम अपने ट्रस्ट की नेचर को नहीं छोड़ना चाहिए, हेल्प की नेचर को नहीं छोड़ना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई मेरा एडवांटेज उठाकर ले जाए। छोटी सी बात है कि भाई मैं कोई ऑटो वाला है, उसको ट्रस्ट करती हूँ, अभी मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ तो मैंने उसको अमाउंट दिया और फिर उसने मुझे समझो 20 रुपये लौटाने थे पर 10 रुपये लौटाए, और फिर मैं कहूँ भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं गिनता। जिस समय वो मुझे रिटर्न पैसे देता है मैं नहीं गिनता, मैं उसको पर्स में डाल लेता हूँ, तो ये कोई ठीक बात तो नहीं है ना। आप इसको ठीक कैसे कह सकते हैं? अगर आपने एक बार ऐसा नोट किया कि किसी ने आपको चीट किया, तो सेकंड टाइम आप डाउट नहीं करेंगे
3: लेकिन चेक करेंगे,
4: लेकिन चेक तो करेंगे ना। अगर आप चेक भी नहीं कर रहे तो इसमें तो फिर आपका ही नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक सटल ईगो है कि नहीं, मैं तो जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप भले डाउट नहीं करें लेकिन आप कम से कम केयरफुल तो हों, आप चेक तो करें। अगर आप उतना भी नहीं करते तो फिर ये तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, तो ये कोई समझदारी तो नहीं है। जीवन में गिल्ट में नहीं जाना होता पर सीखना तो होता है,
3: बिल्कुल,
4: कि वो चीज हमारे साथ दोबारा ना हो।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो कोई भी नेगेटिविटी आपका नुकसान नहीं कर सकती। आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैं उस पावर स्थिति में नहीं हूँ कि आपको बोल सकूं कि यार डोंट मेस विद मी। एग्जांपल, एक पहला इंसान है ए, दूसरा इंसान है बी जो उसका बॉस है, और उसका एक और बॉस है सी। ए बहुत परेशानी में है क्योंकि बी बुरा बॉस नहीं है लेकिन इनसिक्योर बॉस है। कि अच्छा, तुम वो बी ए को बोलता है कि तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने तुम्हें एक्स ने बोला है। अच्छा, मैं जब बोलती हूँ तुम नहीं सुनती हो, एक्स ने तुमको बोला, तुम बड़ा तुम कूद गई हो करने के लिए, ये क्या बात हुई। वरना ओवरऑल ही इज अ वेरी नाइस बॉस, बहुत अच्छा बॉस है। ए बहुत रिस्पेक्ट करती है बी का और कहते हैं आप ज्यादातर ये बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है, उस कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे कभी जो सुपर बॉस है सी, एक दिन ऐसे घूमते फिरते ऐसे आ गया तो बोला, अरे तुमने ये क्यों नहीं किया। और वो एक ही कमरे में ए बी सी तीनों बैठे हैं। सी ए को डांट रहा है कि तुमको मैंने बोला था तुमने ये नहीं किया। ए ने चुपचाप सुन लिया, कुछ नहीं बोला। बी भी कमरे में। थोड़ी देर बाद बी कमरे से निकला तो सी ने बोला, यार तुम बहुत समझदार लड़की हो, तुमको कब बहुत बार देखा, क्या हुआ। बोला, आप बिल्कुल मत कहिएगा लेकिन बी ने मुझे बोला था, आप प्लीज उन्हें मत बोलिएगा, वो बहुत बुरा मान जाएंगे, फिर वो मेरी वाट लगा देंगे। तो आपने जब कहा ना कि कभी कंप्लेंट करने से भी सीनियर के पास जाओ, तो रिवेंज भावना तो वहाँ से भी आ सकती है कि अच्छा तुमने मेरे सीनियर को कंप्लेन कर दी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे केस में क्या करें?
4: हमें वो करना होता है जो राइट है और सही तरीके से करना होता है। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो तो फेस करनी है। एक होता है तरीका ही गलत था और एक है कि जो करना है वो तो करना ही है। लेकिन जैसे कहते हैं, सत्यता तो बोलना है लेकिन सभ्यता से बोलो।
3: अरे वाह, क्या बात है, सत्य बोलना लेकिन सभ्यता से।
4: एक तो है कि बोला ही झूठ या उससे किनारा कर लिया, वो तो चलो वो उस चीज की निशानी है कि आप कमजोर हैं। दूसरा है कि आपने बोला लेकिन आपने तरीका आपका ठीक नहीं था, वो ईगो की निशानी है।
3: जी,
4: दोनों ही राइट नहीं है। लेकिन एक है कि आपको फेथ है, आपको उसके ऊपर विश्वास है, अपने कर्म के ऊपर विश्वास है और आपने उसको सही तरीके से भी किया, विच इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी इजी। हम पहले तो ये भी फील होना कि ये राइट है, उतना भी तो इंट्यूटिव पावर होनी चाहिए, उतनी भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये राइट है। फिर उस राइट को बहुत डिग्निटी से कहना, उसके बाद फिर जो होगा उसको फेस करने की ताकत होनी चाहिए। और वो फेस करने की ताकत आ जाती है बिकॉज यू आर, व्हेन यू आर वेरी ऑनेस्ट। जैसे व्हेन वी स्टडी स्पिरिचुअल स्टडी, एक शब्द आता है, सच तो बिठो नच, विच मीन्स जब आप बहुत सच्चे होते हैं तो आप अंदर में नाचते रहते हैं।
3: सच तो बिठो नच,
4: सच तो बिठो नच, माना जो सच्चा होगा, जो राइट कर रहा है, वो अंदर से बहुत हल्का होता है, उसमें बहुत पावर होती है, इनर पावर बहुत होती है। देन यू हैव द पावर टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो, आपके पास कॉन्सिक्वेंस फेस करने की भी पावर आ जाती है। पर अगर झूठ होता है ना, तो वो ऑलरेडी आपको अंदर ही अंदर डिप्लीट कर देता है। आपका डर है, आपका झूठ है, आपका गुस्सा है, फिर आपके अंदर कॉन्सिक्वेंस फेस करने की भी ताकत नहीं होती है। सो व्हाट आई बिलीव इज, करना तो है ही ना, आप इनजस्टिस तो सहन नहीं करेंगे, आप गलत तो सहन नहीं करेंगे, तो जो भी आपको लगता है राइट मेथड है, जो भी राइट विधि है, आप करें, उसके बाद देखेंगे जो होगा। व्हेन यू डू राइट, राइट विल हैपन टू यू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सच्चाई का सामना करने की ताकत सच्चाई से ही आती है। आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने पिछले 3 साल में 6 नौकरियां चेंज करी हैं और वो बहुत सीधे साफ सरल मन के हैं, और वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जगह में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, मुझसे होता नहीं है, लेकिन वो बहुत सीनियर पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। वो कह रहे हैं कि कई जगह तो मुझे सामने से बोला गया है कि भाई तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको निकाल के फेंक देंगे हम, या तुमको इतना इनइफेक्टिव कर देंगे तुम अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे, तुम खुद ही छोड़ दोगे। तो वो कहते हैं कि मेरे पास चॉइस है कि मैं उनका हिस्सा बनूं उस बड़े ग्रुप का जो ये पॉलिटिक्स करती है अपने आप में ही, पता नहीं उनको क्या मिलता है इससे, या मैं इससे दूर रहूं। अभी तक मैं दूर रहा, मेरे करियर में कोई प्रोग्रेशन नहीं हुआ, मैं 3 साल 4 साल 7 8 साल से इनफैक्ट मैं स्टैग्नेंट ही हूं, या फिर मैं बोलूं यार मेरा घर परिवार है, मुझे उसको चलाना है। तो जब सामने वाले आपको कह रहे हैं कि भैया देखिए अगर आप इसका हिस्सा नहीं होंगे तो आपको को महत्व नहीं दिया जाएगा, आप ऐसे माहौल में कैसे आगे बढ़ेंगे?
4: अगर आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते उससे फर्क नहीं पड़ता है।
3: अच्छा,
4: एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू परफॉर्म ग्रेजुअली, तो फिर वो बोलता है ना, आपने जो किया है वो रिजल्ट तो बोलता है, सफलता तो बोलती है। फिर आपको कोई समझो दे वो समबडी हू वाज शेयरिंग विद मी कि शी इज गुड एट हर वर्क, बट इनिशियली सब जैसे काम पूरा हुआ फिर 5 बजे हैं, सब मिलते हैं, फिर कारोबार जिसको बोलते हैं, फिर कुछ ड्रिंक करना, मिलना, ये वो, मैं उसका हिस्सा कभी नहीं बने। तो जब हिस्सा नहीं बने तो इनिशियली एक्सेप्टेंस भी नहीं, थोड़ा सा रिजेक्शन, थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं, थोड़ा सा फेवर भी नहीं, प्रिविलेज भी नहीं, बट शी वॉज गुड एट हर वर्क, परफॉर्म किया, आउटपुट दिया, शी इज एट अ सीनियर पोजिशन टूडे। एज लॉन्ग एज आप परफॉर्म करते हैं, आप आउटपुट दिखाते हैं, कौन सी कंपनी होगी जो आपको निकालेंगे मुझे बताएं, क्यों निकालेंगे वो? लेकिन अगर आउटपुट भी नहीं है देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आई रियली डोंट फील कि अगर आउटपुट है तो आपको कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने की जरूरत है। ये जरूर हो सकता है कि अगर आप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते तो लोग आपके बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं, थोड़ा बहुत रिजेक्ट करते हैं, टॉन्ट कर देते हैं, दैट इज ओके, इट इज ओके। आपको फेथ होना चाहिए आप जो कर रहे हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. You're listening to Mirchi Mornings with me, Priscilla. And abhi abhi ye show shuru hua hai. So when you're driving to work, making that बस 5 मिनट और वाला ब्रेकफास्ट, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो कि आज तुम पूरी तरह प्रोडक्टिव रहोगे जबकि तुम घर से काम करने वाले हो. वेलकम. आज का रूल काफी सिंपल है, नो बोरिंग मॉर्निंग्स. थोड़ा सा बॉलीवुड वाला ड्रामा, थोड़ा सा देसी गॉसिप, थोड़ा सा म्यूजिक और काफी सारी मिर्चीदार एनर्जी टू मेक योर मॉर्निंग्स अ लॉट मोर मिर्चीदार. बिकॉज ऑनेस्टली यार, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, लाइफ में मिर्ची बनाए रखना जरूरी है. और अगर तुमको मेरी बकबक पसंद आती है तो जल्दी से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 64.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. You're with Priscilla on Mirchi Mornings. और चलो अब थोड़ा सा time traveling करने का time आ चुका है. 1521 में Spanish forces led by Hernan Cortes captured Tenochtitlan and took Aztec ruler Cuauhtemoc prisoner, ending the Aztec Empire. 1792 में फ्रांस के किंग लुई द 16th को formally अरेस्ट कर लिया गया एंड डिक्लेयर किया गया एनिमी ऑफ द पीपल. 1918 में ओपा मे जॉनसन बिकेम द फर्स्ट वुमन टू एनलिस्ट इन द यूएस मरीन कोर. 1942 में द यूएस आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स ऑथोराइज द टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट टू डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब. और फिर 1961 में ईस्ट जर्मनी सील्ड द बॉर्डर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन विद बार्ब्ड वायर, leading to the Berlin Wall. Finally, 1969, IIA New York went full celebration mode with a massive ticker tape parade for the Apollo 11 astronauts after their historic moon landing. NYC really said, "Moon se aaye ho, pehle parade to banti hai bahut." Main hoon Priscilla tumhare saath mein and mujhe follow kar lo abhi jaakar. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp number hai 9033Mirchi. That's 9033647244. Time for some Mirchi, they are bangers. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी स्टोरी मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो चेक करते हैं कि आज मदर नेचर का मूड कैसा है। अरे भाई, वेदर चेक करने वाले हैं। अभी फिलहाल कम्यूट करने वाले हो तो एटलीस्ट वेदर को समझ के जाना जरूरी है। राइट नाउ इट्स अराउंड 71 डिग्रीज फारेनहाइट, मोस्टली सनी है, लेकिन फील होने वाला है अ लिटिल वार्मर, 73 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। लेकिन होल्ड ऑन, सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक के बीच में स्काई जो है वो थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी हो जाएंगे, और अराउंड 3 बजे के आसपास क्लाउड्स थोड़े से और सीरियस होकर आ सकते हैं तुमसे मिलने के लिए। मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस एक्सपेक्टेड है अराउंड दैट टाइम। टेम्परेचर वाइज आज का रेंज देख लेते हैं, 71 से लेकर 86 डिग्रीज फारेनहाइट तक है। फील्स लाइक टेम्परेचर होने वाला है 72 से लेकर 86 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में। और गुड न्यूज भी है मेरे पास, आज रेन का कोई चांस, कोई सीन नहीं है। लास्ट 24 आवर्स में प्रेसिपिटेशन वॉज जीरो, एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में भी प्रेसिपिटेशन इज जीरो एक्सपेक्टेड। मतलब कि आज अम्ब्रेला को अपनी छुट्टी मनाने के लिए घर पर छोड़कर जाओ। कल इट वॉज 72-87 डिग्रीज फारेनहाइट, सो टुडे का हाई है 86 डिग्रीज फारेनहाइट, विच इज ऑलमोस्ट द सेम एज यस्टरडे। बेसिकली वेदर कह रहा है मैं ज्यादा चेंज वेंज होने के मूड में नहीं हूँ, तुमको जो करना है वो कर लो। तो करना तुम्हें क्या है, सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाना है, SPF 50 प्लस प्लस प्लस वाला। Of course, you should carry your water bottle with you if you're going out. घर पर हो तो भी plenty of water पियो, and साथ में layer के player बनो to feel smart in comparison to the weather. Umbrella, आज रहने दो यार, उसे घर पर छुट्टी मनाने दो। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, तुम्हारी छुट्टी अगर नहीं है मुझे सुनते रहो, मिर्ची mornings और मिर्चीदार हो जाएंगी। मुझे कनेक्ट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। मिलती हूँ तुम्हें अगले आवर में, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: か。ミッチーモーニングス。ミッチーモーニングス with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची आवक का 3 only on Mirchi Mornings. मिर्ची आवक का 3. सबसे पहले बिल गेट्स की डॉटर फीबी गेट्स की शॉपिंग स्टार्टअप फिया इज फेसिंग स्क्रूटनी ओवर एन अलेजेड प्रैक्टिस कॉल्ड कुकी स्टफिंग. बेसिकली ऑनलाइन सेल्स का क्रेडिट ऐसे सेल्स के लिए लेना जो आपने एक्चुअली ड्राइव नहीं की. रिपोर्ट से द अलेजेड कंडक्ट कुड पोटेंशियली लीड टू सीरियस फेडरल चार्जेस. राइट नाउ दीज आर एलिगेशन एंड नो कन्विक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. एंड नंबर टू पर एन एक्सट्रीमली

0: Mirchi.
1: Escabana, poscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

विद प्रिसिला, इट्स हॉट। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब स्पोर्ट्स की थोड़ी बातें कर लें। फर्स्ट अप हॉकी। अहेड ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026, फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट PR सृजेश सेज इंडिया शुड बी एमिंग फॉर अ टॉप 4 फिनिश एट मिनिमम। उनके वर्ड्स में एनीथिंग बियॉन्ड दैट वुड बी अ बोनस। इंडिया इज इन पूल डी अलोंग साइड इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड वेल्स। सो कॉम्पिटिशन काफी टफ तो है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई है हमारी। बेसिकली सृजेश का मैसेज है, पहले टॉप 4, फिर देखेंगे ट्रॉफी कितनी दूर है। एंड आई थिंक ही इज राइट इन सेइंग दैट। एंड अब हॉकी स्टिक से चलते हैं थोड़ी स्पार्कलिंग डायमंड्स की तरफ। तनिष्क जो है वो लेकर आए तुम्हारे लिए फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। यू कैन गेट अप टू 25% ऑफ डायमंड की वैल्यू पर एंड मेकिंग चार्जेस पर। एंड अगर तुम्हारे घर में पुराना गोल्ड है ना, चाची दादी नानी ताई किसी का भी, उसको लेकर जाओ वहां पर। एंड अगर वो 18 कैरेट से ऊपर है तो तुम्हें 0% डिडक्शन मिलेगा एक्सचेंज कराने पर। एंड तुम और भी बहुत सारा गोल्ड एक्सचेंज करा सकते हो, बहुत सारे मजे लूट सकते हो फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स में, विच इज हैपनिंग एट तनिष्क। ऑफ कोर्स कंडीशंस आर अप्लाइड, जाकर चेकआउट करना बनता है। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ऑल्सो चेक आउट माई सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग ईस्ट कोस्ट, मेरा नाम है प्रिसिला, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम्हारे बर्थडे स्क्वाड के नाम बताने वाली हूँ मैं भी, लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तुम्हारी कॉफी हो स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा वाईफाई बिहेव करे एंड तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का शादी कब करोगे टाइप का मैसेज ना आए। एंड नाउ लेट्स सी हु एल्स वाज बोर्न ऑन दिस वेरी डे। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री वी हैव एनी ओकली, द लेजेंडरी अमेरिकन शार्प शूटर, बोर्न इन 1860। देन वी गॉट फिडेल कास्ट्रो, फॉर्मर लीडर ऑफ कुबा, हु वाज बोर्न इन 1926। एंड जानेट येलन, ये इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है। एंड बॉलीवुड लवर्स, द लेजेंडरी वैजयंती माला, एक्ट्रेस एंड क्लासिकल डांसर, हु वाज बोर्न इन 1936। एंड टुडे आल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द आइकॉनिक श्रीदेवी जी, बोर्न इन 1963। हर परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू टू लिव ऑन विद जनरेशंस ऑफ फैंस। एंड हॉलीवुड में वी हैव गॉट सेबेस्टियन स्टैन, यस मार्वल फैंस। आज बकी बांस का बर्थडे है, हु वाज बोर्न इन 1982। तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे, Remember, you're in very good company. और good company से याद आया, मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ हूँ अगले एक और घंटे के लिए। फिलहाल तुम जाकर मिर्चीदार बैंगर सुनो और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, यानी कि MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you on Mirchi Mornings. And now time hai gold and silver ka rate update janne ka.
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,400. $4,400 ke mark par wapis gold pahunch gaya hai aur market aggressively upward trend par hai. Isse pehle gold ke prices upward trend par jayen, aap aaiye 22 carat gold jewelry, 18 carat colorless diamond jewelry, GI certified natural diamond jo platinum ki ring mein set ho. Raj Jewels ki unique financing option jisme aap 0% interest pe zero down payment ke saath bina किसी हिडन फी बिना किसी इंटरेस्ट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक कर सकते हैं. वो खूबसूरत सी ज्वेलरी आज घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी के. कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और अप्रूव होने पे आज ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना इंटरेस्ट के पैसे दें और गोल्ड का प्राइस आज लॉक करें ताकि जब 9 महीने तक अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ा हो तो वो बेनिफिट आपके साथ आपके गहनों में आपके गोल्ड में आपके पास रहे. आइए rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें.
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन Mirchi Mornings. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है Mirchi Pris, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-6472-44. अभी मिर्ची दार गानों की बारी है. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vieja la burka.
0: Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं. तो
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने दो पैसे भी निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पे क्या मेरा नाम लिखा है?
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए.
2: सबको लगा दूंगा लाइन में.
3: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला और सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब सुनने वाले हो राशि जोन का पहला पार्ट, एरीज से लेकर वर्गो तक।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, अनएक्सपेक्टेड टास्क आ सकते हैं, सो पैनिक नहीं करने का, पहले चाय पीने का, फिर स्ट्रेटजी बनाने का, क्रिएटिव चीजों में एनर्जी लगाओ, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 7। टॉरस यानी कि ऋषभ राशि, मूड थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो तो बॉडी को मूव करो, वर्कआउट करो, वॉक करो, स्ट्रेच करो, स्टेबल कंफर्ट इज योर वाइब टुडे। लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, क्यूरियोसिटी को फॉलो करो, कुछ नया सीखने का चांस मिल सकता है, बस फिटनेस रूटीन का कल से पक्का वाला बहाना मत बनाना। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 11। कैंसर यानी कर्क राशि, लव्ड वंस के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो, बट होम एंड वर्क के बीच बाउंड्रीज भी बनाए रखो, हर प्रॉब्लम का कस्टमर सपोर्ट तुम नहीं हो यार। लकी कलर फॉर यू इज ऑफ व्हाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस फुल ब्राइटनेस पर है, बस बॉडी को इग्नोर मत करो, टेंशन या माइनर एक्स हो तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ यार। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर, लकी नंबर इज 9। वर्गो यानी कन्या राशि, पॉजिटिव थिंकिंग प्लस योर लेजेंडरी अटेंशन टू डिटेल कैन ब्रिंग स्टेडी प्रोग्रेस, आज परफेक्शन के चक्कर में प्रोग्रेस को हॉस्टेज मत बनाना। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव, लकी नंबर इज 6। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 1 विद मी प्रिसिला। और अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स, तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033 6472 4। Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, Rashi's own part 2 is here. मैं बोलूँ तो Priscilla तुम्हारे साथ हूँ on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, अपने सराउंडिंग्स में ब्यूटी और बैलेंस नोटिस करो. सिंपल पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस लिंगरिंग स्ट्रेस को हल्का कर सकती है. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 3. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, टास्क्स में डीप फोकस लाओ और क्वाइट मेडिटेशन से माइंड को सेंटर्ड रखो. आज मल्टीटास्किंग से ज्यादा मेन टास्किंग की जरूरत है. लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 8. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एडवेंचर मोड ऑन करो और जो पुराने या फाइनेंशियल अरेयर्स अटके हुए हैं ना, उनमें मूवमेंट हो सकती है. यूनिवर्स प्लीज प्रोसेस दैट पेमेंट. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 5. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, फीलिंग्स और एम्बिशन दोनों काफी स्ट्रांग रहेंगे आज. गट इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करो एंड क्विक बोल्ड डिसीजंस लेने से बिल्कुल मत डरो. लकी कलर फॉर यू इज चारकोल. लकी नंबर इज नंबर 1. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इंडिपेंडेंट थिंकिंग से फ्रेश क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं. आर्टिस्टिक साइड को लीड करने दो यार, हर डिसीजन स्प्रेडशीट से नहीं लिया जाता. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 10. पाइसीज यानी कि मीन राशि, इंट्यूशन टुडे इज सीरियसली स्विच्ड ऑन. इनर वॉइस को लिसन करो, पेशेंस रखो और ऑप्टिमिज्म का साथ बिल्कुल मत छोड़ो आज के दिन. लकी कलर इज सी ग्रीन. लकी नंबर इज 12. एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट द्वितीय. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरे साथ ही बने रहो ना यहाँ पर भी और सोशल मीडिया पर भी. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. WhatsApp का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतू राज Only on मिर्ची It's hot
1: Hi My name is Peter Parker.
2: Oh, Cadence, Spider-Man, brand new day आ गई है. And for God's sake, please theater में जाकर ही देखो. Is what जीतू राज will tell you. क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं. Especially जब characters आपस में बात करते हैं, तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है, वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake, किसी से भी story मत सुनो. Don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also if you have kids around you enjoy it fully क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं. And it's all required in Spider-Man brand new day but I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: मिर्ची फ्रेश माल.
5: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: And just like that, Mirchi Mornings comes to an end. तुम्हारे साथ मॉर्निंग ड्राइव करना was an absolute vibe. थोड़ा सा म्यूजिक प्ले किया, थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ा सा देसी तड़का भी मारा. बेसिकली चाय या कॉफी के बिना चाय या कॉफी की फीलिंग आ जाती है तुम्हारे साथ. मैं हूं प्रिसिला, एंड बिफोर आई साइन ऑफ, हियर समथिंग फॉर ऑल माई देसी लिसनर्स आउट देयर, जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिट कैरी करना बहुत मजे का लगता है. सेलिब्रेट करो आजादी विद ईडन रोब एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू US. ऑगस्ट 6 तारीख से 16th August तक enjoy करो flat 35% off on apparel for men, women and kids. साथ में extra 10% off भी मिल रहा है fragrances पर. और क्या चाहिए यार? Eden Rope flagship store is in North Brunswick, New Jersey. या फिर shop करो nationwide at usedenrobe.com. That's us.edenrobe.com. So अभी फिलहाल तुम plan करो to dress up for the Independence Day celebration. या फिर heading to a desi get together for this weekend, ya phir simply tumhe ghar ki yaad mein naye kapde khareedne hain, Eden Rope has got you covered. And hey, I've got you covered. Bajane wale main tumhare liye mirchi dar hotties, yani ki bangers, abhi ki abhi. Lekin before I disappear till tomorrow, you don't disappear on me. Follow me Instagram or X par, mera handle hai mirchi pris, that is mirchipris. WhatsApp ka number 9033 mirchi, that's 9033647244. Abhi ke liye tada bye bye hai, stay tuned and stay hot. Could he-

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: पर 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हेलो हेलो वेलकम। ये वो टाइम होता है जब आप और मैं मिल बैठते हैं और उस जमाने के गानों को, उस जमाने की बातों को एंजॉय करते हैं। सो आ गई आपकी प्यारी श्रेया और आज मैं एक हॉरर फिल्म लेकर के आई हूँ। अब आप इसको हॉरर फिल्म भी कह सकते हो, मिस्ट्री फिल्म भी कह सकते हो। यू नो एट दैट टाइम हॉरर और मिस्ट्री को बहुत अलग अलग नहीं देखा जाता था। थोड़ा सा हॉरर में मिस्ट्री होती थी और थोड़ी सी मिस्ट्री में हॉरर होता था। लेकिन एक बड़ी खास बात है इस फिल्म की। वेल दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जो कि डैनी ने, हाँ जी, द एक्टर डैनी ने डायरेक्ट की थी। ये उनकी पहली और आखिरी डायरेक्टेड फिल्म थी। इसमें थे राजेश खन्ना और किम और इसमें थी अरुणा ईरानी। वेल, ये किस फिल्म की बात कर रही हूँ? मूवी का नाम है फिर वही रात। 1980 की ये फिल्म है। आपको ना आज उसके बारे में बताऊंगी। कम राइट बैक, मिल करके गप्पे लड़ाएंगे इसी फिल्म के बारे में। मैं हूँ श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
4: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: आ गई है
4: यही कि मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: ये पटा।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो एक्चुअली में आपकी मदद करने के लिए तैयार हों और उनके अंदर वो कैपेसिटी भी हो टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। आई मीन, वैसे तो सारी दुनिया आकर के ज्ञान दे देती है, लेकिन ऐसे बहुत कम दोस्त हैं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। 1980 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में थी किम। किम का ये डेब्यू फिल्म थी, राजेश खन्ना, अरुणा ईरानी। फिल्म वॉज मिस्टीरियस, फिल्म वॉज हॉरर फिल्म, थोड़ी सी हॉरर थी, ज़्यादा नहीं थी। इस फिल्म में डैनी जी ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जिससे उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया एंड ख़त्म भी कर दिया। मतलब इस फिल्म के बाद उन्होंने डायरेक्शन में कदम नहीं रखा। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि डैनी जी जो थे ना, वो सेम काइंड ऑफ रोल्स कर करके थक गए थे। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे NNCP साहब, वो डैनी जी के बहुत ही क्लोज दोस्त थे। तो एक बार डैनी जी ने ना उनसे बस ऐसे ही शेयर किया कि अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे ना एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रही है। तो NNCP जनरली कोशिश करते थे कि उनकी फिल्में नए डायरेक्टर्स यू नो डायरेक्ट करें। ही यूज टू गिव चांसेस टू न्यू डायरेक्टर्स। और जब ये बात उनके खुद के दोस्त ने कह दी तो फिर कैसे नहीं हो। तो ये जो फिल्म है फिर वही रात, ये डैनी जी ने डायरेक्ट की है, एंड दिस रिमेन्स दी ओनली फिल्म दैट ही इज डायरेक्टेड। लेकिन ये करने का मौका उनको किसने दिया? उनके दोस्त NNCP ने। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

यंग टैलेंट को एक चांस देने में बिलीव करते थे प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब। पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ, फिर चाहे वो एक्टर्स हो या फिर डायरेक्टर्स हो। सो डायरेक्टर्स तो उन्होंने कई सारे नए नए बनाए, जैसे कि सुभाष वाही, जैसे कि अशोक रॉय, सीपी दीक्षित। एंड जब बात हुई डैनी जी की, तो उनके साथ तो ऑलरेडी वो दो फिल्मों में काम कर चुके थे, वन वॉज चोर मचाए शोर एंड द अदर वन वॉज फकीरा। इन दोनों में उन्होंने डैनी के साथ काम किया था, मतलब ही वॉज अ प्रोड्यूसर एंड डैनी जी ऑफकोर्स फिल्म में थे। इसी के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और डैनी ने बस ऐसे ही कहा कि मैं अब सेम तरीके के वही रोल कर करके थक गया हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ना एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। ऐसे में सिप्पी साहब ने कहा, अरे क्यों नहीं, मेरे पास एक स्क्रिप्ट तैयार है, ये एक हॉरर फिल्म होगी, फिल्म का नाम था फिर वही रात, तो ये तुम डायरेक्ट कर लो। अब पता नहीं, डैनी जी को शायद डायरेक्शन इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने और कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, ही वेंट बैक टू एक्टिंग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ इस फिल्म की बातें होती रहेंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: Hi, my name is Peter Parker।
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी।
3: Spiders have three life cycles।
2: I just can't begin to tell you। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर इस फिल्म में होने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने कहा ना ना ना, काका यानी राजेश खन्ना का सिक्का चल रहा है आजकल बॉलीवुड में, यानी बड़े पर्दे पे, उनको लो। तो फिर क्या हुआ, इस हॉरर फिल्म में आ गए शशि कपूर की जगह राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। ये फिल्म में थे काका राजेश खन्ना अलोंग विथ किम, और किम का ना ये डेब्यू फिल्म थी। वेल, पहले इसमें शशि कपूर होने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, स्पेशली प्रोड्यूसर्स होते थे, वो ना मार्केट रिसर्च पूरी करके आते थे कि कौन सा एक्टर चल रहा है, किस पे पैसा लगाना है, और उनका बहुत से होता था इन द कास्ट ऑफ द फिल्म। सो इस फिल्म में भी भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें काका आए यानी राजेश खन्ना आए, नॉट शम्मी कपूर साहब। वेल, फिर क्या था, डैनी जी की ये ओनली डायरेक्टेड फिल्म थी, और उन्होंने काका जो कि उनके दोस्त थे, मतलब हल्के फुल्के वाले दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, उनको पूछा एंड काका ग्रेट। दिस इज हाउ दिस हॉरर फिल्म वॉज मेड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: Radio Mitri, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: आई आई आई आई आई आई

अरमान। लेकिन इस फिल्म के बाद से दोस्ती खत्म हो गई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है। 15th अगस्त 1980 को इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना थे इसमें, किम थी, एंड दिस वाज़ दी ओनली फिल्म जो डैनी जी ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म पे पैसा लगाने वाले यानी प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब, जो कि नए डायरेक्टर्स को चांस देते थे, और इस बार उन्होंने चांस दिया था अपने दोस्त डैनी को। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये बात ने एक दरार पैदा कर दी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कि फ्रेंड्स हुआ करते थे यानी सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में, वेल डैनी जी ने तो ये तक कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त नहीं होता, सब एसोसिएट्स होते हैं। लेकिन फिर एक बार और दोनों ने एक साथ काम किया, वो कितने साल बाद था और क्यों किया, I will let you know, come right back. मैं हूँ श्रेया, only on पुरानी जीन्स।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wiet bala burga. Milci burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना है?
2: नहीं नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं उसमें। अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राजी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को। नहीं, ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

18 साल लग गए इस दोस्ती को वापस जमने में, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, पर मुझे समझ नहीं आया कि कैसी दोस्ती हो सकती है। आई मीन इमेजिन, तुम अपने दोस्त को कोई काम देते हो, कोई ड्यूटी देते हो, ओके, और उसमें उस ड्यूटी में माना कि तुम्हारा पैसा लग रहा है, पर तुमने उसको ट्रस्ट किया ना, इसलिए उसे दिया। अब उस ड्यूटी में अनइंटेंशनली अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, जिसमें उस बंदे का, तुम्हारे दोस्त का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो खराब हो, लेकिन नहीं होती है, लोगों को नहीं पसंद आता है, तो क्या आप अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे? अब ऐसे ही कुछ हुआ था सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में, फिर वही रात जिसकी आज बात कर रहे हैं ना, इस मूवी की 1980 में ये फिल्म आई थी, एंड ये डैनी जी की इकलौती डायरेक्टेड फिल्म थी। डैनी जी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे, वो सेम रोल्स कर करके एकदम बोर हो चुके थे। एट दैट टाइम सिप्पी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सिप्पी साहब वैसे भी नए डायरेक्टर्स को मौका दिया करते थे, तो उन्होंने डैनी से कहा कि ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, इस फिल्म को तुम डायरेक्ट कर लो। Now what happened was that this film actually flopped at the box office. 15th August 1980 पे ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, जबकि इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड किम। अब इसका पूरा ठिकरा जो है वो सिप्पी साहब ने डाल दिया भाई डैनी जी के ऊपर, कि उनको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो इतनी अच्छी फिल्म नहीं बना पाता। ऑल ऑफ दैट दोनों दोस्तों ने एक्चुअली में 18 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करी, एंड आफ्टर 18 ईयर्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स यू नो एक पिटारे में डाला और उसको बंद किया, एंड दे वर्क टुगेदर इन द फिल्म कॉल्ड सिलसिला है प्यार का। लेकिन इसमें 18 साल लग गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती नहीं होती। आप अपने दोस्त से नाराज कितने दिन, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तो जाके उसे झप्पी पा ही लेते हो, है ना? पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डैनी जी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो बहुत बहुत नर्वस थे, एक्सट्रीमली नर्वस थे जब वो अपनी पहली और आखिरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म जिसके बारे में आज बात हो रही है, मूवी का नाम है फिर वही रात, 1980 की ये फिल्म, और इसमें थे राजेश खन्ना। अच्छा, डैनी जी ने कहा कि क्योंकि वो इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे, इसकी वजह से वो अपनी पहली फिल्म के डायरेक्शन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए। ही सेड कि मैं दोनों में से एक काम कर सकता था, पर क्योंकि प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब, जिन्होंने ये फिल्म उनको दी थी, वो चाहते थे कि डैनी इस फिल्म में एक्टिंग भी करें, तो उनको वो डुअल काम करना पड़ गया। और क्योंकि वो डायरेक्शन में पहली बार उतरे थे, तो वो उन दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाए। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की बातें चलेंगी। वेल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था दी एक्ट्रेस किम ने, पर उनको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये अभी आपको बताऊंगी। कहानी बहुत मजेदार है। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची पाउस्कोप जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
3: स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी
4: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल
3: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: रहा है।
1: किम हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका डेब्यू ऑपोजिट राजेश खन्ना होगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शशि कपूर ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को किम से, और एनएन सिप्पी एक्चुअली लाइक्ड हर। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना है, मैं आपको उनके ऑपोजिट उतारूंगा। ये फिल्म थी फिर वही रात, जिसकी आज बात हो रही है, जो कि डायरेक्ट की थी डैनी जी ने। किम फिर मिली डैनी से इन द फिल्म कॉल्ड चोर मचाए शोर, उनके सेट पर। एंड डैनी जी क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे फिर वही रात, दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई तो किम एक्चुअली ब्लेम्ड हरसेल्फ। शी सेड कि वो ढंग से एक्टिंग नहीं कर पाई, उनकी पहली फिल्म थी एंड उनकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई। लेकिन ये बात सिप्पी साहब ने एकदम एक सिरे से नकार दी। ही सेड कि हम आपके साथ फिर से काम करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ यू द फिल्म फ्लॉप। बट इमेजिन वॉट, शी नेवर गॉट रिपीटेड इन एनी ऑफ द एनएन सिप्पीज फिल्म अगेन। पुरानी जीन्स पे आज फिर वही रात की बातें हो रही है। अभी गाना भी सुनाऊंगी, कम राइट बैक। मतलब मैं नहीं सुनाऊंगी, इस फिल्म का गाना सुनाऊंगी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सोचो इस रोल के लिए वोटिंग हुई थी पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एक कैंडिडेट थे जीतू जी जितेंद्र जी और दूसरे कैंडिडेट थे काका यानी राजेश खन्ना। वेल आज बात हो रही फिल्म फिर वही रात। वेल इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे डैनी जी और ये उनकी इकलौती डायरेक्टेड फिल्म बन के रह गई। इस फिल्म में पैसा लगाने वाले यानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब। Now what happened was कि सिप्पी साहब चाहते थे कि जीतू जी इस फिल्म में आए, लेकिन डैनी जी ने कहा कि जीतू जी ना फिल्म के रोल के लिए मैच्योर नहीं दिखते, वो चाहते थे कि काका इस रोल में आए। अब काका का ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उस टाइम पे एकदम फ्लॉप चल रहा था, सो दोनों के बीच में थोड़ी जय जय हुई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच में। एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि चलो एक काम करते हैं, हम अपने ऑफिस के स्टाफ से वोट कराते हैं। एक्चुअली में जितना वहाँ पे कास्ट एंड क्रू था ऑफिस का, सबने वोट किया। दे हैड टू वोट अमंगस्ट जीतू जी एंड राजेश जी। एंड सोचो किसने जीता? ऑफ कोर्स इट वाज राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला ना, मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है? किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं. आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

एक्ट्रेस किम के फादर ने ना उनको एक वार्निंग दे रखी थी, एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारा डेब्यू हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्री चेंज करना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है, 15 अगस्त 1980 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना एंड किम थी इसमें, किम जिन्होंने अपना डेब्यू किया था इस फिल्म से, एक और जने हैं जिन्होंने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, दैट वाज डैनी। सो किम के फादर ने ना उनको ये वार्निंग दे रखी थी कि 6 महीने के अंदर अगर तुम्हें कोई अच्छी फिल्म मिल गई तो फिर करना, अदरवाइज अगर 6 महीने क्रॉस कर जाते हैं यू स्टिल डू नॉट हैव अ गुड फिल्म इन योर यू नो इन योर लिस्ट तो फिर आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। ये बात किम ने बताई थी अपने दोस्त शशि कपूर को। शशि कपूर उनको ले गए NN सिप्पी साहब के पास, और सिप्पी साहब डैनी जी के पास जो कि फिल्म बना रहे थे फिर वही रात। सो सिप्पी साहब ने शशि कपूर से प्रॉमिस किया था कि उनके दोस्त के लिए वो एक अच्छा लॉन्च प्लान करेंगे। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी लॉन्च्ड Right opposite, none other than Kaka, yani Rajesh Khanna. Purani jeans pe, main hoon Shreya, come right back.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई उस जमाने में सोशल मीडिया पे भले ही ट्रोलिंग ना हो, लेकिन फिल्मी मैगजीन्स कम नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड किम, उनकी ये डेब्यू फिल्म थी जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ। इंडिया की हॉरर फिल्म जिसका नाम था फिर वही रात। इट वॉज डायरेक्टेड बाय डैनी जी एंड इसमें मेन लीड में थे राजेश खन्ना और उनके ऑपोजिट मैदान में पहली बार उतरी थी द एक्ट्रेस किम। सो उनके लुक्स को लेकर के रादर उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको मिला था। फिल्मी मैगजीन्स ने लिखा था, फिल्मी पंडित्स ने बोला था एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ तो इंडस्ट्री में बहुत स्प्रेड हो गया था दैट शी इज एक्सप्रेशनलेस। लेकिन जब किम ने इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को तो उन्होंने कहा कि उनके डायरेक्टर डैनी चाहते थे कि उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे रहें, एकदम डेड पैन की तरह रहे। सो शी डिड व्हाट द डायरेक्टर आस्क्ड। अब भाई दोनों में कौन सही था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस फिल्म के बाद किम जी को काफी मशक्कत करनी पड़ी टू गेट अनदर फिल्म इन हर किटी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ फिर वही रात, इसकी बातें चलती रहेंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतू राज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे हाफ श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है याने लेट्स हिट द हाईवे वेल आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का हाईवे हिट आप मुझे डेडिकेट करना चाहते हो क्योंकि वो है रवि साहब की आवाज है मुझे जाने दो अगर अभी नहीं गई तो कल मिलने फिर कैसे आऊंगी बट यस इन केस अगर आपको मुझसे बात करनी है वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना है जहां आप भी मुझसे कुछ बोल सकते हो रेडियो पे तो सिर्फ मैं ही चपड़ चपड़ करती रहती हूँ सो फॉर दैट फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव दैट्स आरजे SHREYA विद लव ऑन दैट नॉट गुड नाइट

0: यार कभी कभी लगता है कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ के पहाड़ों में अपना एक कैफे खोल लो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। हेलो जी, हाय बापू शाय। और अचानक से कैफे की बात इसलिए आ रही है दिमाग में बिकॉज आई एम करंटली वॉचिंग मुसाफिर कैफे ऑन नेटफ्लिक्स एंड लिटरली लविंग इट टू द कोर। अभी मैं थर्ड एपिसोड पे ही पहुंची हूँ। बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस हैं मेरे फॉर द कैरेक्टर्स दैट आर देयर, बट लेट मी टेल यू, इस सीरीज में विक्रांत मस्सी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रहे हैं एंड दे आर डूइंग व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने ओवर द टॉप एक्टिंग की है, नहीं नहीं, इतनी जेन्युइन एक्टिंग की है कि आपको लगेगा कि अरे इस कैरेक्टर को तो मैं जानता हूँ अपनी जिंदगी में। वैसे आज मेरे शो पे ना बहुत स्पेशल कुछ होने वाला है। इसी सीरीज यानी मुसाफिर कैफे की स्टार कास्ट होगी मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची ऑन माई शो। वैसे इस कॉन्वर्सेशन के अलावा और भी बहुत कुछ प्लान्ड है फॉर द डे, सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Deșteptarea cu Blana, Cioran și Ionuț.
1: Iscabana, puscabana, sacabana,
2: rabana,
1: burga, burga. La virtua la burga.
2: Milci, burga.
3: हेलो
4: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहे
4: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
3: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना है?
4: नहीं नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
3: पूरी
4: नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
3: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
4: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
3: ये कॉपी मुझे भी भेजना
4: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
3: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी।
4: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
3: हाँ बिल्कुल बताइए।
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। जिसका मुझे था इंतजार, अरे अरे, इससे आगे गाना गाऊंगी तो आप शायद रेडियो का वॉल्यूम कम कर देंगे या चैनल चेंज कर देंगे। एनीवे, मैं बात कर रही हूँ मच अवेटेड सीजन 2 ऑफ फर्जी बाबू मोशाय, जिसकी शूटिंग इज ऑलरेडी अंडरवे। बाकी शाहिद कपूर और विजय सेतुपति स्टारर इस सीरीज में। हमने राशि खन्ना को भी देखा था जो आरबीआई ऑफिसर मेघा व्यास का रोल प्ले करती नजर आई थी, और वो इसी रोल को एक बार फिर सरप्राइज कर रही है इन द सेकेंड सीजन। इनफैक्ट उनके ही शूट से एक BTS भी इंटरनेट पे बस कर रहा है। बाकी राजन डी के डायरेक्टोरियल इस ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर के बारे में और कुछ अपडेट मिला तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी। उड़ता तीर लेने की बात नहीं कर रही हूँ यार, ये तो अपकमिंग फिल्म का नाम है। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लीड रोल निभाते नजर आएंगे इसमें। मूवी के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं आकाश ए कौशिक, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है, एंड इट इज सेट टू रिलीज ऑन द 9th of October। बाकी ये फिल्म एक ह्यूमर ड्रिवन फैमिली एंटरटेनर है जिसका कोर इज केओस एंड कॉमिक सिचुएशंस। 26 सालों बाद एक अमेजिंग ग्रैंड बी टाउन कमबैक करने वाली हैं शिल्पा शिरोडकर, वो भी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मालामाल वीकली 2 में। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म में पहले सिर्फ परेश रावल थे, लेकिन उसके बाद इसमें परिणीति चोपड़ा और रवीना टंडन भी ऐड हुई, और अब द अपडेट इज दैट शिल्पा शिरोडकर अपना कमबैक कर रही हैं इन द बी टाउन विद दिस मूवी इटसेल्फ, जिसके साथ ही इस फिल्म के लिए मेरे एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर चल रहा है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चा पेटी में हूँ, आप में हूँ, आपके साथ श्रुति। एंड एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट इट्स टाइम टू फाइंड अ मिर्ची फिल्मची इन यू। यस यू हर्ड इट राइट। सो द ड्रिल ऑन अ डेली बेसिस इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजने के लिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। सो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं अंकुश जी। तो मेरा पहला सवाल है, कटरीना कैफ की कॉमेडी फिल्म जिसमें वो एक वॉनबी एक्ट्रेस बनी है,
3: तीस मार खान।
0: बहुत ही बढ़िया। तीस मार खान के मेल लीड कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जूही चावला के साथ जिसमें दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है,
3: आलू है ना?
0: हाँ हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू।
3: आलू मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
0: बहुत बढ़िया। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में जूही चावला के पापा कौन है?
3: कादर खान।
0: कादर खान की फिल्म जिसमें उनका होटल का बिजनेस होता है?
3: दूल्हे राजा।
0: बहुत बढ़िया। दूल्हे राजा में फाइव स्टार महाराजा इंटरनेशनल के सामने अपना ढाबा कौन खोलता है?
3: गोविंदा।
0: गोविंदा की फिल्म जिसमें वो हीरोइन की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए नौकर बनते हैं?
3: हीरो नंबर वन।
0: बहुत बढ़िया। हीरो नंबर वन की फीमेल लीड का नाम?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर का निकनेम लोलो है, बेबो किसका निकनेम है?
3: करीना कपूर का।
0: क्या बात है। करीना कपूर की फिल्म जिसमें रोबोट्स हैं?
3: शाहरुख खान के साथ है।
0: हाँ, रावण। बहुत बढ़िया। रावण के मेल लीड कौन है?
3: शाहरुख खान।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची का
6: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जिसके जरिए मैं आपके अंदर के मिर्ची फिल्मची को ढूंढती हूँ। सो आज इस गेम की शुरुआत की हमारे साथ अंकुश जी ने। अब इसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ है आयुष।
3: हेलो आयुष, कैसे हैं आप?
4: मैं बढ़िया, आप सुनाओ?
3: बिल्कुल बढ़िया। आप जरा और बढ़िया कर दीजिए ताकि मैं अपना गेम आगे कंटिन्यू कर पाऊँ यार।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो जिस पॉइंट पे अंकुश जी अटके थे, इट वाज शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं,
4: डियर जिंदगी।
3: डियर जिंदगी में शाहरुख खान के पास थेरेपी लेने कौन जाता है?
4: आलिया भट्ट।
3: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप देंगे ना इसको,
4: गली बॉय। गली बॉय।
3: गली बॉय के मेल लीड कौन है?
4: रणवीर सिंह।
3: रणवीर सिंह की फिल्म जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर है?
4: सिम्बा।
3: वाह, सिम्बा की गर्लफ्रेंड इन द मूवी?
4: सारा अली खान।
3: सारा अली खान की डेब्यू फिल्म?
4: ओह, केदारनाथ।
3: केदारनाथ के मेल लीड का नाम?
4: सुशांत सिंह राजपूत।
3: सुशांत सिंह राजपूत ने कौन सी बाइक

0: Energy.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो?
2: क्या यार?
4: अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: अच्छा, क्या शादी निभाना ही हमेशा प्यार निभाना होता है?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए थे साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म कभी अलविदा ना कहना ने, जिसने इंडस्ट्री में रिसेंटली 20 साल कंप्लीट किए हैं। सो मैंने सोचा कि यार, इस मूवी ने जो 5 लेसन्स मुझे पर्सनली सिखाए हैं उसकी डिस्कशन कर लूं। हाँ, ये बात और है कि जब ये फिल्म आई थी तो उस वक्त बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी इसके थॉट प्रोसेस को लेकर, बट एक्चुअली आज जिंदगी के स्टेज पे ना, कैंक इज वन ऑफ माई सुपर डुपर फेवरेट मूवीज। तो चलिए, 5 के पंच के लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए नंबर 2 पे बात करते हैं अबाउट द लेसन कि रिलेशनशिप में सबसे डेंजरस चीज कभी कभी साइलेंस होती है। सो मूवी में देव और माया का कनेक्शन एकदम से नहीं बनता। पहले आती है लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग मिसअंडरस्टूड, और फिर एक ऐसा इंसान मिलता है सामने वाले को जो वो बात समझ लेता है विच योर पार्टनर कुडंट इवन थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैंक रिमाइंड्स अस कि इमोशनल निग्लेक्ट भी निग्लेक्ट ही होता है, और जब दिल में बातें जमा होती रहती हैं, डिस्टेंस अपने आप बढ़ता जाता है। मूविंग ऑन नंबर 3 पे, लेट्स टॉक अबाउट द थॉट कि भाई, प्यार मिल जाना और सही काम करना दोनों अलग चीजें हैं। देखो, ये फिल्म देव और माया यानी कि शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को ट्रू लव विनर्स बनाकर नहीं छोड़ती। उनके डिसीजन से ऋषि और रिया यानी कि अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा हर्ट होते हैं, फैमिलीज टूटती हैं, और गिल्ट भी साथ चलता है। मतलब प्यार रियल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस प्यार तक पहुंचने का हर डिसीजन सही हो। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी तो ऐसी ही लेसन्स की बातें करूंगी विच आई लर्न्ड फ्रॉम करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना। बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: देखो इस फिल्म में ना कोई टिपिकल विलन था और ना ही कोई परफेक्ट हीरो।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी उन्हें नो आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट करण जौहर की मच लव्ड एट द सेम टाइम वेरी मच कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म कैंक, यानी कि कभी अलविदा ना कहना, जिसने इंडस्ट्री में 20 साल कंप्लीट किए हैं। तो इसे सेलिब्रेट करते हुए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू आई एम डिस्कसिंग अ फ्यू लेसन्स दैट आई लर्न फ्रॉम कभी अलविदा ना कहना। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब नंबर चार पे बात करते हैं अबाउट द थॉट की जो रिलेशनशिप बाहर से परफेक्ट दिखता है जरूरी नहीं अंदर से भी परफेक्ट हो। लाइक ऋषि एंड रिया, दोनों सक्सेसफुल लविंग और हैप्पी कपल दिखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इंस्टाग्राम वर्दी लाइफ का मतलब हैप्पी मैरिज होता है? सोचो आज ये डिबेट्स हम ऑनलाइन देखते हैं, बट कभी अलविदा ना कहना ने आज से 20 साल पहले इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत की कि भाई रिलेशनशिप की रियलिटी वो नहीं जो दुनिया देखती है, रियलिटी वो है जो दो लोग अकेले में फील करते हैं। मूविंग ऑन नंबर पांच पे अबाउट द थॉट, कभी कभी खुद को चूज करना भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। देखो बॉलीवुड में यूजुअली प्यार मिल गया तो दी एंड एंड दैट इज हैप्पीज एंडिंग्स। वहीं कैंक ने कहा नहीं भाई, नॉट सो फास्ट, कभी अपनी हैप्पीनेस चूज करने के बाद भी गिल्ट होता है, हार्ट ब्रेक होता है, लोनलीनेस होती है और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। किसी रिलेशनशिप से निकल जाना इजी नहीं होता और किसी नए प्यार को चूज कर लेना पुराने दर्द को मैजिकली इरेज नहीं कर देता। एंड मे बी दैट्स वाई कैंक स्टिल हिट्स डिफरेंटली 20 years लेटर। 2006 में फिल्म को देखकर बहुत लोगों ने कहा था यार ये कैसा प्यार है, बट आज 20 साल बाद ये सवाल थोड़ा बदल गया है कि क्या सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप निभाना जरूरी है क्योंकि वो सोसाइटी की नजर में परफेक्ट है। और शायद कभी अलविदा ना कहना की सबसे बड़ी लेगेसी यही है, इट डिडंट गिव अस अ परफेक्ट लव स्टोरी, इट गेव अस एन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन अबाउट लव, मैरिज, लोनलीनेस एंड चूजिंग हैप्पीनेस इवन व्हेन देयर इज नो कम्प्लीटली राइट चॉइस। बाकी आप इस फिल्म के बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना हिट

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। जिसका मुझे था इंतजार, अरे अरे, इससे आगे गाना गाऊंगी तो आप शायद रेडियो का वॉल्यूम कम कर देंगे या चैनल चेंज कर देंगे। एनीवे, मैं बात कर रही हूँ मच अवेटेड सीजन 2 ऑफ फर्जी बाबू मोशाय, जिसकी शूटिंग इज ऑलरेडी अंडरवे। बाकी शाहिद कपूर और विजय सेतुपति स्टारर इस सीरीज में। हमने राशि खन्ना को भी देखा था जो आरबीआई ऑफिसर मेघा व्यास का रोल प्ले करती नजर आई थी, और वो इसी रोल को एक बार फिर सरप्राइज कर रही है इन द सेकेंड सीजन। इनफैक्ट उनके ही शूट से एक BTS भी इंटरनेट पे बस कर रहा है। बाकी राजन डी के डायरेक्टोरियल इस ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर के बारे में और कुछ अपडेट मिला तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी। उड़ता तीर लेने की बात नहीं कर रही हूँ यार, ये तो अपकमिंग फिल्म का नाम है। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लीड रोल निभाते नजर आएंगे इसमें। मूवी के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं आकाश ए कौशिक, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है, एंड इट इज सेट टू रिलीज ऑन द 9th of October। बाकी ये फिल्म एक ह्यूमर ड्रिवन फैमिली एंटरटेनर है जिसका कोर इज केओस एंड कॉमिक सिचुएशंस। 26 सालों बाद एक अमेजिंग ग्रैंड बी टाउन कमबैक करने वाली हैं शिल्पा शिरोडकर, वो भी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मालामाल वीकली 2 में। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म में पहले सिर्फ परेश रावल थे, लेकिन उसके बाद इसमें परिणीति चोपड़ा और रवीना टंडन भी ऐड हुई, और अब द अपडेट इज दैट शिल्पा शिरोडकर अपना कमबैक कर रही हैं इन द बी टाउन विद दिस मूवी इटसेल्फ, जिसके साथ ही इस फिल्म के लिए मेरे एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर चल रहा है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: दोस्तों, थ्रो बैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी सी एक रील मोमेंट मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. Na vida la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे हैं।
3: राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो,
3: हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राजी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, मिर्ची फ्रेश माल।
5: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है, उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कितने बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कॉफी पीने निकले थे लेकिन वापस आते आते जिंदगी के बड़े डिसीजंस भी ले लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी और नाम सुना मुसाफिर कैफे। और मुझे लगा कि यार कैफे का असली मेन्यू कॉफी थोड़ी ना होता है, वो तो कॉन्वर्जेशंस होते हैं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसमें विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रही है। कहानी तो वैसे एक कैफे से शुरू होती है लेकिन असल में बात उन लोगों की है जो जिंदगी के सफर में मिलते हैं, कुछ पल साथ रहते हैं और फिर हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यार कॉफी के कॉन्वर्जेशंस ही ऐसे होते हैं, कोई पहली बार आई लाइक यू बोलता है और कोई कभी कभार मुझे बस एक बात बतानी है से शुरू करता है। किसी टेबल पर दोस्ती शुरू होती है तो किसी दूसरे टेबल पर टेक केयर बोल के लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कभी किसी को नई जॉब मिलती है, कभी स्टार्टअप का आइडिया बनता है, कभी शादियां फिक्स होती है, तो कभी बस दो दोस्त 3-4 घंटे तक दुनिया भर की बातें करते रहते। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या है कि सालों बाद ना कॉफी की टेस्ट याद रहे या ना रहे, लेकिन उस टेबल पर हुई हर कॉन्वर्जेशन वर्ड बाय वर्ड याद रहती है। वैसे दोस्तों आपने भी ऐसी कॉन्वर्जेशंस कई बार की होगी, तो ऐसे किसी कैफे का नाम अगर आपको रखना हो तो वो क्या होगा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और मुसाफिर कैफे क्या आपने भी देखी जरूर बताना। और तब तक ऐसा बॉलीवुड का गाना सुनते हैं जो हर कॉफी डेट और हर दिल की बात को और भी खूबसूरत बना देता है, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक फ्रीडम ऐसी भी जो किसी कैलेंडर पे नहीं लिखी होती। शमशांदा लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो फ्रीडम है जो मन करे वो पहनने की फ्रीडम। याद है वो टाइम जब फैमिली फंक्शन से पहले मम्मी बोलती थी कि ये पहन लो ये अच्छा लगेगा, और हमारा जवाब होता था नहीं मुझे तो वो पहनना है, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज पहनने का भी एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि स्टाइल शायद हमारी पर्सनालिटी का सबसे फन एक्सप्रेशन होता है, और हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, कभी ट्रेडिशनल कभी मॉडर्न कभी सिंपल और कभी फुल मेन कैरेक्टर मोड। और इस आजादी सीजन अपनी स्टाइल को चूज करने की फ्रीडम को इडन रोब भी सेलिब्रेट कर रहा है। अगस्त 6 से 16 तक एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन वुमेन एंड किड्स, और फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल द फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक न्यू जर्सी या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrobe.com। Eden Rope, a legacy of style। और दोस्तों अगर आपकी पर्सनालिटी एक बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो कौन सी होती जरूर बताना। DM me on Instagram @mirchisiddhi, और फिर एक ऐसा गाना उस मेन कैरेक्टर एनर्जी के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

दोस्तों, कभी कभी लगता है कि पहले हम गाने सुनते कम थे, उसके साथ ज्यादा रहते थे। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज अचानक कैसेट का वो जमाना याद आ गया। जी हाँ, जब फेवरेट गाना सुनने के लिए ना पूरा साइड ए पेशेंटली सुनना पड़ता था, फिर फास्ट फॉरवर्ड करना भी एक आर्ट होता था, और उस वेट का भी एक अलग ही मजा होता था। और मजे की बात तो ये है कि फेवरेट गाने का इंतजार करते करते बीच के जितने भी गाने थे ना, वो भी हमें याद हो जाते थे, क्योंकि एक कैसेट खरीदते थे और उसके हर ट्रैक की अलग ही अपनी पहचान बन जाती थी। और वैसे तो आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने हैं, रील्स में 20 सेकेंड्स के क्लिप्स हैं, लेकिन तब एक कैसेट महीनों तक हमारे साथ चलती थी। कार में वही, घर में वही, वॉकमैन में वही। और शायद इसीलिए आज भी जब भी कोई पुराना गाना बजता है ना, उसके सिर्फ लिरिक्स याद नहीं आते, वो पूरा दौर याद आ जाता है। स्पेशली वो दौर जब हम कैसेट की जब रील बाहर निकलती थी तो पेंसिल से उसे ठीक करते थे। तो चलिए आज रेडियो पर भी वही पुराना एहसास वापस लाते हैं। इस गाने को बिल्कुल कैसेट के जमाने की तरह बिना स्किप किए पूरा इंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपने जिंदगी की पहली कैसेट कौन से एल्बम की खरीदी थी। टेल मी ऑन इंस्टेड RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मैंने जिस एल्बम की खरीदी थी उसी का ना आपके लिए आगे बजाने वाली हूँ। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक जमाना था जब कमिंग अप नेक्स्ट का मतलब सच में वेट करना होता था। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका थ्रो बैक थर्सडे में। तो चलिए थ्रो बैक टू दोज टाइम जब यार संडे का इंतजार सिर्फ एक शो के लिए होता था। उसे सोचिए, आजकल तो एक क्लिक में पूरा सीजन मिल जाता है, लेकिन फ्राइडे रात का वो काउंटडाउन, क्योंकि यार फेवरेट मूवी टीवी पर आने वाली होती थी, उसका मजा ही अलग होता था। और अगर बीच में लाइट चली गई तो बस उस दिन का मूड ही ऑफ। और शायद इसीलिए उस वक्त एंटरटेनमेंट की वैल्यू भी अलग थी। हम देखते कम थे, इंतजार ज्यादा करते थे, और शायद इंतजार ही उस खुशी को इतना बड़ा बना देता था। तो आज घर जाते हुए एक काम जरूर कीजिए, किसी पुराने टीवी शो का टाइटल सॉन्ग याद करने की कोशिश कीजिए और देखना पूरा बचपन बैकग्राउंड में प्ले होने लगेगा। और हाँ, मुझे ज़रूर बताना वो कौन सा शो है जिसके लिए आप टाइम से पहले टीवी के सामने बैठ जाते थे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए उस जमाने की यादों को सलाम करते हुए सुनते हैं ये एवरग्रीन बॉलीवुड गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virpa, la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो।
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं
2: तो फिर किसने किया है सर? ये सर, ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने दो पैसे भी निकाले।
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता, आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए।
1: सबको लगा दूंगा लाइन में
2: सर। मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
1: लेकिन
2: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल।
5: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वीकेंड तो बहुत ही खूबसूरत था, वेदर भी अब फुल समर मोड में आ चुका है, लेकिन फाइनेंशियल वेदर थोड़ा मिक्स चल रहा है। मार्केट चेंज हो रहे हैं, मॉर्गेज रेट्स मूव कर रहे हैं और नेचुरली बायर्स के माइंड में सवाल भी बढ़ रहे हैं कि यार अभी बाय करें, वेट करें या अपने एग्जिस्टिंग होम इक्विटी को किसी बिगर फाइनेंशियल गोल के लिए यूज करें। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स से लेकर रीफाइनेंसिंग कंसिडर करने वाले होम ओनर्स तक हर किसी के लिए सिचुएशन अलग है और सही इंफॉर्मेशन ऐसे वक्त में बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और इसी चेंजिंग लैंडस्केप को सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

डेट नाइट का एक्साइटमेंट ना दोस्तों रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद नहीं, थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्लान चाहे हफ्तों पहले बने हो या शाम को अचानक डिसाइड हुआ हो, रेडी होते वक्त मूड ना ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो ही जाता है। फेवरेट आउटफिट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, फेवरेट फ्रेग्रेंस और सबसे इंपॉर्टेंट वो फीलिंग कि आज रूटीन से कुछ अलग होने वाला है। और ऑनेस्टली चाहे सालों पहले की रिलेशनशिप हो या नई नई डेटिंग, कभी कभी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो एक सिंपल से डिनर को भी ना थोड़ा स्पेशल बना देते हैं। तो अगर आजकल आपके कैलेंडर में भी ऐसी कोई इवनिंग आ रही है तो उसे थोड़ा और ड्रेसअप करने का एक बहाना तनिष्क भी दे रहा है। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स विद अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन on exchange of old gold above 18 carat. Terms and conditions apply. So, aaj hi visit kijiye Tanishq store at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey and add the diamond glam to your love story. Usi ke saath mujhe zarur bataiye ki aapka ultimate date night Bollywood song kaun sa hai. DM me on Insta at RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI, aur chaliye mere romantic playlist ka ye agla gana right here on Mirchi. It's hot.

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओ हो हो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माई माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनिधि चौहान की आवाज़ और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो बैकग्राउंड में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI. और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और 2008 में एक ऐसा ही एल्बम बना था जिसका यार हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। बात हो रही है दोस्ताना मूवी की, या जिसका म्यूजिक दिया था विशाल और शेखर ने, और जिसको प्रोड्यूस किया था हमारे करण जौहर ने। वैसे तो यार शराबन बाउंस इस मूवी का सबसे ज़्यादा फेमस गाना था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मायामी जा रहे हो और जॉन को इमेजिन ना करो, शिल्पा शेट्टी को इमेजिन ना करो, और ये गाना बैकग्राउंड में प्ले ना करो। लेकिन और एक गाना है इस मूवी का जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फन है, एंड दैट इज मादा लाडला बिगड़ गया। मतलब माँ को अगर डायरेक्टली आपको डांटना नहीं है तो आजकल माएँ मादा लाडला बिगड़ गया ही कह देती है। और जिस तरह से किरण खेर ने चिल्ला कर जोर से कह दिया था हाय रब्बा मैनू चख ले यार, उस वजह से वो लाइंस एक्चुअली गाने में थी ही नहीं, लेकिन वो इतने फीलिंग्स के साथ बोली गई थी कि विशाल शेखर ने डिसाइड किया कि ये जो पैच है ये हम गाने में एक्चुअल गाने में भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए बीच बीच में आपको किरण खेर की आवाज़ भी आएगी कि हाय रब्बा मैनू चख ले। बस माँ के जो फीलिंग्स है उसे विशाल शेखर जैसे कंपोजर्स भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उनका पैच उस गाने में रखा और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये गाना हिट हुआ है। तो चलिए सुनते हैं मादा लाडला बिगड़ गया फ्रॉम दोस्ताना। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए मादा लाडला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहा हूँ। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बना था और बिल्कुल बना था। 2008 में एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, दैट इज देसी गर्ल, संग बाय शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान एंड विशाल ददलानी। ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफ़ी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस गाने के बाद देसी गर्ल हर शादी का एक एंथम ही बन गया। और हमें भी कहाँ पता था कि प्रियंका भी इंटरनेशनल हो जाएगी और उनकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी, देसी गर्ल। तो जी हाँ, देसी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम। वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप मादा लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना हिट।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हां, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कम्पोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कम्पोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में, फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैगलाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी यार, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर, और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में यार, जिसका हर एक गाना धमाकेदार है, दिल को छू जाने वाला है। जी हाँ, 2008 की रिलीज दोस्ताना मूवी, जिसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने और जिसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर ने। यार क्या एल्बम बनाया, हर एक गाना दिल को छू जाने वाला था। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आपसे आई है, दैट रिक्वेस्ट इज फ्रॉम प्रियंका। और प्रियंका कहती है, वैसे प्रियंका रहती है जर्सी सिटी में, लेकिन वो फिलहाल विजिट कर रही है एडिसन, अपने यू नो पार्टनर से मिलने आई है। और जब भी वो लोग डेट नाइट्स पर जाते हैं, तब ये गाना बहुत बार वो अपने प्लेलिस्ट में बजाते हैं, एंड दैट इज़ खबर नहीं इट्स एन आयरनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट पे कहाँ जाना है यही हमको खबर नहीं होती। लेकिन ये जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, तो श्रेया घोषाल एंड शान की आवाज़ में। तो चलिए आज प्रियंका के लिए ये गाना प्ले करते हैं। आयरॉनिकली उनका नाम भी प्रियंका है एंड शी इज़ गोना लव दिस सॉन्ग। तो चलिए आज प्रियंका के लिए खबर नहीं प्ले करते हैं, लेकिन आप भी दोस्तों मुझे बता सकते हो विच इज दैट वन एल्बम जिसका हर एक गाना बहुत अमेजिंग है और आप कभी स्किप नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपके लिए वो गाने प्ले करना, राइट हियर ऑन मिर्ची। और कहाँ, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskra bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na wiet bala burka. Milci burka. Aga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया। कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राजी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं।

0: इंशाल्लाह भाई अच्छा चेहरा होना भी बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो गई है।
1: बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप इसलिए
0: कुकड़ू को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी हवा और लाइट ऐसी होती है ना कि लगता है कि सब कुछ सिनेमैटिक हो रहा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और उसी ड्रीमी वाइब के लिए परफेक्ट गाना है सूरज हुआ मध्यम, शाहरुख खान और काजोल का गोल्डन डेजर्ट बैकड्रॉप, स्लो मोशन रोमांस और लिरिक्स जो एक अलग ही दुनिया क्रिएट करते हैं, जैसे मौसम ना रियलिटी से थोड़ा ब्रेक दे रहा हो। तो दोस्तों, आप भी बताओ कि आपका ड्रीमी वेदर सॉन्ग कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये ड्रीमी सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

दोस्तों, बॉलीवुड का ना एक इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। शम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, थिएटर्स वापस फुल हो रहे हैं, पर ऑडियंस बदल चुकी है। अब लोग हर फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं जाते, सिर्फ उन फिल्म्स के लिए जाते हैं जो एक्सपीरियंस देती है। जैसे जब कोई बिग स्केल एक्शन या विजुअल स्पेक्टेकल आता है ना, तब लोग बोलते हैं कि यार इस मूवी को तो थिएटर में ही देखना चाहिए। लेकिन बाकी कॉन्टेंट OTT पे इक्वली स्ट्रांग चल रहा है। मतलब बॉलीवुड अब दो ट्रैक्स पर चल रहा है, इवेंट सिनेमा और इंटीमेट स्टोरी टेलिंग। तो आप भी बताओ दोस्तों कि आप थिएटर जाने के लिए क्या चूज करते हो, स्टोरी या स्केल? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मर्जी सिद्धि। चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना, आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: क्या आप जानना चाहते हो व्हाट सैवेज एक्चुअली लुक्स लाइक? आई विल टेल यू. माय बेस्टी टेक्स्टेड हर एक्स बॉयफ्रेंड सेइंग, हाय, आर यू फ्री टुनाइट? एंड ही वाज लाइक, हाँ, क्यों? शी वाज लाइक, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट नोबडी वांट्स यू. ओके, बाय. एंड दैट वाज सो सैवेज, व्हिच काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी टू आस्क यू कि आपने अपनी जिंदगी में अपने एक्स के साथ इवन होने के लिए, रिवेंज पाने के लिए सबसे ज्यादा सैवेज चीज क्या की है? द मोस्ट सैवेज थिंग आई हैव डन, it's just be indifferent to them. Nothing hurts like pretending as if that person doesn't exist. On that note, मैं अभी भी जानना चाहती हूँ कि आपने सबसे savage चीज़ क्या करी, और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो Insta पर या FB पर. मेरा नाम है Mirchi Roshi, नाम के spelling है Rochie. So go ahead, darling, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो Mirchi, it's hot.